0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
0: खाते गांव से
1: हाँ,
0: गोविंद जी,
1: गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जलोदिया, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, ठंडी पड़ गई थोड़ी, जब पानी वानी गिर गया तो।
0: बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रहा, लेकिन हाँ हल्का सा जैसे ही गिरता है तो थोड़े से मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस उमस हो जाती है।
1: हाँ, हो जाती है पर वो
0: आज गोविंद जी हम जो बात कर रहे हैं ना, आज गोविंद जी कौन बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से बोल रहा था, गोविंद जलोदिया।
0: हाँ, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गोविंद जी, आज जो हमारा विषय है, बात आपकी की हमारे कार्यक्रम का, कि
1: हाँ, अच्छा, पानी
0: पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए।
1: का बर्बादी का कैसा रोका जाए?
0: बताइए ना इस विषय पर आप
1: तो
0: कैसे
1: पानी
0: पानी
1: का क्या
0: का।
1: है कि पानी तो बहुत ही मतलब अनमोल है चीज है। पानी तो मतलब क्या है, जल स्तर कम होता ही जा रहा है। पानी कम डोलो, बहुत सारे नल के टोटिया पे लगी नगर पालिका छोड़ देती है ऐसी पटक, और लोग पटक रहे, चलते रहता है काम उसका। क्या अपना घर भी यही हाल है, नल चल रहा है तो चल रहा है, बंद हो रहा है तो बंद हो रहा है, कोई देख रेख करते नहीं है
0: तो ये
1: क्या?
0: सबको
1: और
0: ध्यान
1: पानी
0: देने
1: है
0: की
1: थोड़ा कम
0: जरूरत है।
1: डोल, फव्वारे से नहाया करो तो और कम पानी का उपयोग होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन है ना, पानी को बर्बादी को तो रोकना है ना हम सभी को, है
1: पानी
0: ना?
1: को रोकना है, कम उपयोग करो जी। बहुत सारे लोग क्या है कि मतलब बहुत ज्यादा ही उपयोग करते हैं उसका। अक्सर हमारे यहाँ खाते गाँव में तो क्या है कि रोड सुबह जब नल आते हैं तो यहाँ से वहां रोड को नहला देते हैं, जब लोगों को मिल नहीं रहा और ये फेंक रहे हैं।
0: अरे ये बहुत गलत बात है, और जहाँ
1: हाँ,
0: कहीं
1: बहुत
0: भी हम ऐसी पानी की बर्बादी होते देखें ना, तो हम उन्हें बिल्कुल बेतकल्लुफी से रोकें, ये हम सभी का फर्ज है।
1: क्योंकि वो हमारे यहाँ क्या है कि पानी की वो नहीं है, नर्मदा जी पास में ही है तो
0: हाँ
1: उससे सप्लाई होता रहता है, तो पानी का कोई वो नहीं है।
0: हाँ, तो आप रोकिए, आप बोलिए उनको कि यदि आज हम पानी की बर्बादी करेंगे तो कल पानी की कमी होगी,
1: ठीक
0: है
1: है।
0: ना? ठीक है गोविंद जी, सबके छोटे छोटे प्रयास ना
1: हाँ,
0: बहुत बड़े संकट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं।
1: अरे अरे, धन्यवाद।
0: ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, नमस्ते।
1: हाँ जी
0: हाँ नमस्ते, कौन
1: नमस्ते
0: बोल रही है?
1: जी, मैं कामिनी दासुंदी बोल रही हूँ, टिकरी से, बड़वानी जिले के टिकरी गांव से,
0: अच्छा, बड़वानी से। कामनी जी, कैसी हैं
1: बड़वानी
0: आप?
1: जिले के टिकरी गांव से। बढ़िया
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया
0: और क्या काम करती हैं?
1: सर। मैं मैडम, मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, हाउसवाइफ हैं। तो कामनी जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि पानी की बर्बादी को आप कैसे रोकती हैं, या पानी खूब जब कपड़े धोती हैं, बर्तन
1: नहीं नहीं
0: मांजती
1: पानी
0: हैं।
1: की बर्बादी को रोकना चाहिए, पानी अमूल्य है अपने लिए, जल ही जीवन है। रोकते
0: ये हम सब समझते हैं, लेकिन है ना, रोकते नहीं हैं।
1: नहीं है, बस वो जैसे नल दे रहा है तो उसको बंद नहीं करेंगे, बर्तन बर्तन धोएंगे तो नल में धोएंगे, ऐसे नहीं करना। बर्तन में लेके पानी में बर्तन धो तो उससे पानी की बचत
0: बिल्कुल,
1: होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप टब में पानी लेके फिर बर्तनों
1: टब
0: को
1: में
0: धोंगी
1: पानी
0: तो
1: लेके
0: पानी की
1: धोएंगे
0: बर्बादी रुकेगी। कार अगर आप पाइप से ना धोएं, बाल्टी से धोएं, तो उससे पानी की बर्बादी रुकेगी,
1: से पानी की बर्बादी
0: है ना।
1: रुकेगी,
0: बहुत सारी बातें हैं। हमारी
1: बहुत सारी
0: सब्जी,
1: बातें।
0: दाल, चावल, ये सब धोने का पानी यदि हम पेड़ों में डालेंगे तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और पानी की
1: हाँ,
0: बर्बादी बचेगी।
1: पानी की बर्बादी भी नहीं होगी।
0: बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इन सब का ध्यान रखें तो हम
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं।
1: दीदी, पहली बार मेरा कान लगा है, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रही थी मगर नहीं लगा, लेकिन आज प्रयास सफल हो गया।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कामनी जी, ये प्रयास तब और सफल होगा यदि आप अपने आसपास के लोगों को भी पानी बर्बाद करने से रोक सकें,
1: जी
0: है ना। कहीं भी आप किसी को अगर ऐसा कुछ करते देखें तो उसे बिल्कुल जाकर रोकिए कि ये गलत है, उसे सही तरीका बताइए। या कहीं नल खुला हुआ देखें तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए बिना किसी झिझक के, है ना।
1: पानी का
0: तब
1: भी, और मैं दीदी मैं तो लाइट का भी हमेशा घर में कहती रहती हूँ, वहां का लाइट जल रहा है, फालतू जल रहा है,
0: बिल्कुल
1: उसको बंद
0: हर
1: करो।
0: चीज की अगर बचत हम
1: हाँ
0: करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा भविष्य दे सकेंगे, अच्छी विरासत देकर जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज के कार्यक्रम में आपसे हमने जो बातचीत की वो आप कल प्रोग्राम में सुन सकेंगी 11 बजे से, और हमें बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। धन्यवाद कामनी जी।
1: थैंक यू,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को और प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उपनिरीक्षक के 10 और आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल उज्जैन के महिदपुर में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डोंगला से गुजरने वाला नया फोरलेन महिदपुर शहर के विकास को गति देगा। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है।

0: भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे हेमलता के स्वर में, फिल्म का नाम अखियों के झरोकों से। गीत लिखा रविंद्र जैन ने, संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कोटवा बलिया से। श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले श्रोता नेवादा गाजीपुर से हैं, प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। अगले श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से हैं, कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ, शाहिद। अगले श्रोता अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मुगले आजम से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और साथियों ने। गीतकार है शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। अगले श्रोता नांदेड़ से हैं गौतम नगर, प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अमर अकबर एंथनी इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। श्रोता हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। अगले श्रोता गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सीता और गीता से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। श्रोता है ताज अंसारी, गुलाम साबिर और मिराज जहां। अगले श्रोता धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, रामचंद माखीजा, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार, श्रीमती सविता, स्वाति और पूरा माखीजा परिवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना अपनी बेटी पार्वती के भाग जाने से दुखी भृगु साई नदी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता है। यशवंत उसे बचाता है। भृगु हड़ताल को लेकर यूनियन नेताओं पर जमकर बरसता है। रामू बामू कंपनी के पुराने टायर बेचकर बोतल लेकर आते हैं। खाने के लिए मछली का इंतजाम करने के लिए दोनों मिलकर कंपनी के भंडार से जिलेटिन चुराकर साई नदी में विस्फोट करते हैं। विस्फोट में लिचू का लड़का जगन्नाथ मारा जाता है। लेबर इंस्पेक्टर का सहायक राधेश्याम ठाकुर साहब से मिलता है और कमीशन लेकर कंपनी के मजदूरों की हड़ताल से निजात दिलाने का सौदा तय करता है। नारायणी को अस्पताल में सफाई करने का काम मिल जाता है। पुलिस विस्फोट करने के आरोप में रामू बामू को गिरफ्तार कर लेती है और वर्कसाइट पर विस्फोटक का भंडारण करने के कारण कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना करती है। मुंशीगंज के कसाईयों द्वारा फेंके हुए सड़े कच्चे मांस को खाकर दलित बस्ती के कई बच्चे मर जाते हैं और बहुत से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं। अब आगे

0: नारायणी, अरे सफाई हो गई क्या?
1: जी डॉक्टर साहब।
0: गुड। देखो नारायणी, अभी तुम्हें एक काम और करना है।
1: जी कहिए।
0: देखो वो सामने मरीजों के खून और मवाद से सनी पट्टियां पड़ी हैं, इन्हें साई नदी के किनारे गड्ढा खोदकर उसमें दबा देना, समझ गई?
1: जी।
0: ये रोज का काम होगा, समझ गई तुम?
1: जी जी समझ गई डॉक्टर साहब।
0: शाबाश।

0: अरे नारायणी, तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो?
1: वो यशवंत बाबू, खून और मवाद भरी पट्टियां दबानी है इसमें।
0: अब कोई बात नहीं, ये तुम फावड़ा मुझे दे दो, गड्ढा मैं खोद देता।
1: नहीं नहीं, आप यूनियन के नेता हैं, साफ कपड़े पहने हुए हैं।
0: अरे तो क्या हुआ, अब लाओ मुझे दो, मैं खोदता हूँ। अरे लाओ दो। नारायणी, गड्ढा तो खोद गया, ला कपड़े मुझे दे दे।
1: ये लीजिए।
0: अच्छा, बर्खास्त हो जाने के बाद तुम क्या करोगी नारायणी? सच सच बता नारायणी, क्या उस दिन तू ठाकुर साहब के घर अपनी इच्छा से पाप का काम करने गई थी? बोल, जवाब दे।
1: हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं इसे? क्या ये मेरी बात का विश्वास करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसे मेरी बात का यकीन होगा। पर सुमति काकी के अलावा और कौन है इस दुनिया में जो दिल खोल कर दिखाने पर मेरी सच्चाई पर विश्वास करे? मैं जानती हूँ, और ऐसा कोई भी नहीं है।
0: क्या सोचने लगी नारायणी?
1: हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू।
0: नारायणी, क्या मैं तेरी कोई सहायता कर सकता हूँ?
1: बर्खास्त होने पर हम लोग एक साथ चले जाएंगे। अगर अगर बाबू रास्ते में मेरा पति मर गया तो?
0: नारायणी, नहीं मरेगा तेरा पति, नहीं मरेगा। देखा नहीं लिचू लंगड़े का क्या हाल हुआ? बेटे के मरने के बाद से सारा दिन बेटे की चिता जलने वाली जगह पर ही पड़ा रहता है। भिखू की बेटी पेट की भूख मिटाने के लिए पैसेंजर ट्रेन में भाग गई। अरे कितने बच्चे जहरीला मांस खाकर मर गए। देख, अब धैर्य रख नारायणी, मेरा दिल कहता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: यशवंत बाबू, मजदूरों की बातें छिप कर सुनी थी, सहायता की जरूरत मुझे नहीं आपको है। हा? आपको और दूसरे यूनियन नेताओं को अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
1: वो मजदूर तुम लोगों को जिंदा गाड़ देंगे, खून खराबा होगा, वो तुम लोगों के चीथड़े बना डालेंगे। मैं पूछती हूँ, सच सच बताना, क्या तुम लोगों ने सबके साथ विश्वासघात नहीं किया? क्या भूख से मरने वालों की हत्या तुम लोगों ने नहीं की?
0: इतनी कोशिशों के बावजूद इतने लोगों की भलाई हम नहीं कर पा रहे हैं नारायणी। फिर भी कम से कम एक आदमी के लिए कुछ करने की शक्ति हम में जरूर है। बिल में छिपे हुए सांप की तरह शरीर के किस हिस्से में वो शक्ति है, ये ना तो तुझे मालूम है और ना ही मुझे।
1: मैं फिर कहती हूँ यशवंत बाबू, हमें तो हालात के सामने मजबूर होकर मरना ही है, लेकिन लेकिन तुम लोगों को जिंदा रहना है, हड़ताल कराने के लिए जिंदा रहना है, मजदूरों को भूखा मारने के लिए जिंदा रहना है।
0: नारायणी, सुन नारायणी, देख मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहा है, मैं सब जानता हूं सब, लेकिन क्या तुम इस तरह टूट जाओगी? इतने दिनों से कष्ट सहते हुए हम लोगों ने अपनी हड्डियों को सीमेंट के खंभे जैसा मजबूत नहीं किया है। अरे गांधी बाबा ने कहा था कि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़े तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो दलितों के घर में जन्म ले। तू रो क्या रही है नारायणी?
1: यशवंत बाबू, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल के बरामदे में भी मेरे पति को रहने नहीं देते।
0: क्या?
1: हाँ, यहाँ की बैरक से सब जाने लगेंगे तो मैं इन्हें साथ लेकर चलूंगी। ऊपर से एक दूर पीता बच्चा भी है। हम मर जाएंगे, मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अच्छी तरह से समझ गई हूँ यशवंत बाबू, हम मर जाएंगे।
0: देखो नारायणी, अब खुद पर भरोसा रखो। भरोसा खो देने वाले और मरे हुए इंसान में कोई फर्क नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो।

0: नारायणी नारायणी नारायणी इधर आ।
1: क्या है लिच्चू?
0: नारायणी मेरे लिए दो रोटी लाकर दे सकती है? देख देख मेरा पेट कैसे सूख

0: नदी का पानी भी कड़वा लगने लगा है नारायणी।
1: बिजू चल मेरे साथ चल, तू यहाँ ऐसे बैठा रहेगा तो क्या तेरा मरा लड़का वापस आ जाएगा? चल देख, यहाँ बैठा बैठा तो तू वैसे ही मर जाएगा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नारायण, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे तेरी रोटी नहीं चाहिए नारायण।
1: सिर्फ नहीं करते,
0: तू चल यहाँ से।
1: सुन तो,
0: मुझे कहीं नहीं जाना है।
1: मेरी बात तो सुन।
0: जगन्नाथ मुझे भी अपने पास बुला ले।
1: हौसला रख।
0: नहीं
1: रिचू, नहीं, देख रोते नहीं।

0: नारायणी
1: तुम तो वही हो ना जो यशवंत के साथ यूनियन में रहते हुए भी कंपनी के साहबों की गुलामी करते हो।
0: अब देखो सब अपने अपने फायदे की सोचते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ क्या गलत करता हूँ।
1: तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
0: ओहो नारायणी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ठाकुर साहब बीमार हैं और यहाँ पर हड़ताल चल रही है,
1: तो
0: तो ठीक तरह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और तू साहब के लिए नई तो है नहीं, है ना? देख नारायणी, मुझे साहब ने खुद तुझे ले जाने के लिए भेजा है।
1: पर मैं नहीं जाना चाहती।
0: अरे नारायणी, क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है?
1: क्या मतलब?
0: मतलब साफ है नारायणी, साहब ने धमकी दी है कि वो तुझे उस रात वाली घटना को लेकर झूठ मूठ बदनाम कर देंगे। हाँ, तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। हाँ, अब सोच ले क्या करना है तूने, चलना है या नहीं? अच्छा चल चल चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल। आजा।

0: देखना रानी, साहब थोड़ी देर में आएंगे, तब तक तू यहाँ आराम कर है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अभी आता हूँ मैं।
1: मैं किस जंजाल में फंस गई हूँ? लगता है आज कल में कयामत आने वाली है। खून की नदियाँ, साई में तूफान, इस तूफान में सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं, ये ठाकुर साहब भी नहीं, ठाकुर साहब भी नहीं। कौन कौन हंस रहा है?
2: पहचाना नहीं नारायणी?
1: चौधरी साहब, आप?
2: यानी पहचान लिया? इतने साल बाद भी पहचान लिया? तुझसे इस तरह यहाँ मुलाकात होगी? नारायणी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
1: मैंने भी नहीं सोचा था।
2: नारायणी, तू आज भी मुझसे प्यार करती है ना?
1: प्यार? और तुमसे? तुम्हारे लिए प्यार सिर्फ एक वासना है, शरीर की आग को ठंडा करने का जरिया भर है।
2: नारायणी, तुझे देखकर और तेरी दुर्दशा के बारे में सोच

0: कर मुझे बहुत दुख हुआ। अरे कुछ ये पैसे रख ले, तेरे काम आएंगे नारायणी।
1: साहब, इन पैसों के बदले में आपको क्या चाहिए?
0: कुछ नहीं नारायणी, कुछ नहीं, बस तेरे रूप की गंगा में गोता लगाना चाहता हूँ नारायणी।
1: मैंने तो सुना था कि आपकी शादी हो गई थी।
0: ठीक सुना था तूने नारायणी।
1: साहब, आपकी पत्नी गंगा को पूछती है?
0: गंगा को पूछती है मतलब?
1: हाँ, मेरा मतलब है गंगा की पूजा पूजा पाठ तो करती है ना?
0: करती है, पूजा पाठ जरूर करती है। मैंने तेरे बारे में उसे बताया था, उसकी बहुत इच्छा है कि अगर तू कभी मिले तो तेरी देखभाल करूं, तेरी कोई दिक्कत हो तो मैं तेरी मदद करूं नारायणी। हाँ हाँ, उसने कहा था मुझे।
1: यही वो आदमी है जो वर्षों पहले मेरी देह को छल्ली करके भाग गया था, मेरा सारा सुख छीन लिया था इसने, मुझे आसमान से नरक में धकेल कर कायरों की तरह मुझे पाकर चुपके से निकल भागा था, और आज फिर इसकी गंदी नियत मुझ पर लार ठपका रही है। जी तो करता है कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन अभी तो इस राक्षस के हाथों किसी तरह खुद को बचाना है, मगर कैसे? हाँ, वो सामने फल काटने वाला चाकू पड़ा है। हाँ, यही मेरी अस्मत की रक्षा कर सकता है।
0: अरे कहाँ गुमसुम हो गई तुम है? बोलना, क्या चाहिए तुझे? धन, दौलत, पैसा, सब कुछ दूंगा। बोलना नारायणी, क्या चाहिए? देख नारायणी, तेरा पति बीमार है, तेरा बच्चा छोटा है, मैं तेरी धन दौलत से सब
1: देखो। देखो, आगे मत बढ़ना।
0: अरे नहीं, पास आओ।
1: वरना ये चाकू मैं आपके सीने में भोंक दूंगी। आपकी बेहतरी इसी में है कि तुरंत यहाँ से चले जाइए। सुना आपने? आगे मत बढ़ना, अच्छा नहीं होगा। आपके लिए

0: ये हड़ताली मजदूर मजाक ही बना रखा है। बोलो बोलो
1: साथियों, हड़ताली मजदूर जब तब हमसे टकराते रहते हैं, भले ही कंपनी की शर्तों ने हमारे हाथ बांध रखे हो, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते।
2: हाँ हाँ, हमें आत्मसम्मान से जीना है। हड़ताली मजदूरों का मुकाबला करने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए।
1: दलित बैरक की पार्वती जब से भागी है, हड़ताली मजदूर आते जाते हमें गाली देते हैं, तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं। हम ये अपमान नहीं सह सकते।
2: हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अब की बार हड़ताली मजदूरों का जुलूस इस ओर आएगा तो हम उनका मुकाबला करेंगे।
1: हमें 20 वर्करों की यूनियन बना लेनी चाहिए, हड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि हड़तालियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।
2: हमारी यूनियन का नाम होगा आजाद मजदूर यूनियन। अब की बार हड़ताली आए

0: दो दिन से नारायणी घर नहीं आई। अरे कहां कहां नहीं ढूंढा उसे मैंने, पर वो कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। अरे उसे उसे इस दूध मुहे बच्चे की भी सुध नहीं रही। भगवान, पता नहीं कहां होगी वो, किस हाल में होगी वो। भगवान,
1: शिवो, शिवो भाई,
0: कौन है, कौन है दरवाजे पर?
1: शिवो, मैं हूं लिचू।
0: लिचू, लिचू, तू इतनी रात को यहां क्या करने आया है?
1: डर मत, मैं रोटी मांगने नहीं आया।
0: तो फिर तू क्यों आया यहां?
1: शिवो भाई, देखने आया हूं कि नारायणी अभी तक आई या नहीं।
0: अरे नहीं आई वो, अभी तक नहीं आई। अरे सब जगह ढूंढ लिया उसे, पुलिस वालों से भी पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। अरे लिचू भाई, समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। अरे तू अब दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या अंदर आएगा?
1: आजा अंदर आ। शिवु, बच्चे को गोद में उठा ले और मेरे साथ चल। खुरपी वगैरह कुछ भी साथ ले ले।
0: ये क्या कह रहा है तू? अरे क्या तुझे पता है नारायणी कहाँ है?
1: हाँ पता है, और तू मेरे साथ चल, खुरपी जरूर ले ले।
0: मगर मेरे पास खुरपी तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास कुल्हाड़ी है।
1: चलेगी चलेगी शिवु, जल्दी कर, समय कम है, सवेरा होने से पहले पहुंच जाना है हमें।
0: अरे देख शिवु, शिवु वो देख, पलंग पर बैठी नारायणी साहब के पैर दबा रही है, वो देख।
2: अरे हाँ,
0: अरे हाँ,
2: चल चल, चल जल्दी से अंदर चल,
0: चल
2: चल आजा।
3: कौन कौन है?
4: क्या तुम दोनों यहाँ?
5: हम दोनों, पति को घर पर अकेला छोड़कर तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। अभी तुझे मजा चखाता हूँ मैं।
4: मैं जानती थी कि तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। मेरा विवेक ही तुम्हें यहाँ तक खींच कर लाया है। लाओ लाओ कुल्हाड़ी मुझे दे दो।
0: नहीं, मैं कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
4: दे दो या मुझे जबरदस्ती छीनना पड़ेगा।
0: नहीं दूंगा कुल्हाड़ी।
4: तू मुझे दे दो कुल्हाड़ी, दे दो। तू मुझे, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन तो दो मुझे, दो। ओके, कुल्हाड़ी मेरे हाथ में।
3: नारायणी, तू ये क्या कर रही है? नहीं नहीं नहीं नारायणी नहीं, देख देख देख, ऐसा मत कर नारायणी, ऐसा मत कर।
4: मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे बदनाम करेगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा।
0: नहीं नहीं नहीं,
4: अब देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। अरे भाग।

0: यशवंत, यही नाम है ना तेरा?
1: जी।
0: देख यशवंत, हड़ताल खत्म हो चुकी है, तुम्हारे सारे के सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं।
1: हाँ?
0: 60 मजदूरों को वापस काम पर रख लिया गया है, दलित बैरक के सभी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया है। राम, तुझे भी।
1: क्या?
0: ये ले लिफाफा, इसमें तेरा हिसाब है। हाँ, जाकर शंभू के दल से मिल जा। अभी शंभू का दल बहुत ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। जा।

0: शंभू काका, रुक जाओ शंभू काका, मैं भी आ रहा हूँ।
1: शंभू काका हा? वो देखो यशवंत दौड़ा चला रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं।
2: ठीक है। अरे शंभू काका, शंभू काका, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया काका। हड़ताल विफल हो गई, यूनियन के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए।
0: बड़ा भोला है रे यशवंत तू।
2: हाँ?
0: अरे यूनियन के नेताओं को तो शास्त्री जी की सिफारिश पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ताकि विद्रोही मजदूरों से उनकी जान की रक्षा की जा सके। जब शास्त्री जी का इशारा होगा यूनियन नेता छूट जाएंगे।
2: ये आप क्या कह रहे हो शंभू काका?
1: हाँ, और जानता है यशवंत, तुझे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि तू हमारा सच्चा हमदर्द है, ईमानदार है। उन लोगों के लिए तेरा मजदूरों के हाथों मर जाना ही अच्छा है।
2: नहीं नहीं भृगु, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है।
0: यही सच है यशवंत, मगर तेरे जैसा सच्चा इंसान इस कड़वी सच्चाई को कैसे समझ सकता है। एक बात और, शास्त्री भी कंपनी के हाथों बिक चुका है।
2: क्या? ओ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब।
0: चल यशवंत, आ चले।
1: हाँ, चल।
2: लेकिन काका, लिचू कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा।
0: उसने साई नदी में कूद कर अपनी जान दे दी।
2: ओ, और बसुमती काकी?
1: माँ पुलिस की गोली का शिकार हो गई।
2: और नारायणी और उसका पति?
0: शिबू मर गया।
2: क्या?
0: नारायणी उसकी लाश को छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं हुई। तू हमारे साथ चल, अगर मजदूरों को पता लग गया कि तू यहाँ है तो वो तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
2: हाँ, नहीं काका, मैं नहीं जाऊँगा।
0: क्या?
2: आज तक आपका ये डिब्बा खाली है ना?
0: ये हमेशा खाली रहेगा यशवंत, कभी नहीं भरेगा ये डिब्बा।
2: ये मेरे हिसाब के रुपए हैं काका, सारे रुपए मैं आपके इस डिब्बे में डाल रहा हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ फिर हड़ताल होगी, तब ये रुपए बहुत काम आएंगे। तब किसी को भूखा मत मरने देना काका, किसी को भूखा मत मरने देना।
0: एक बात सुन यशवंत।
2: हाँ बोलो काका।
0: उस दिन की घटना से तूने हमेशा नारायणी को चरित्रहीन समझा, लेकिन वो चरित्रहीन नहीं है।
2: ये तुम क्या कह रहे हो काका?
0: मैं ठीक कह रहा हूँ, तू भी हमारे साथ चलता तो कितना अच्छा होता।
1: हाँ चलना यशवंत।
2: नहीं काका, नहीं, मुझे वापस जाना होगा, हर हाल में वापस जाना होगा।
0: क्या नारायणी के पास?
2: उसके पास भी जाऊंगा, उसे और उसके बच्चे को मेरी जरूरत है। और काका, एक कारण और भी है मेरे वापस जाने का।
0: एक कारण और?
2: हाँ काका, एक कारण और।
1: यशवंत, अरे रुक जाओ, रुक जाओ यशवंत, रुको।
3: ओ, अरे इतनी रात को कौन आ गया भैया?
4: अरे ठहरो भैया, आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ।
3: यशवंत तुम?
2: हाँ मैं।
3: इस वक्त? चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जाओ यहाँ से।
2: शास्त्री जी, मैं वो तलवार हूं जिस पर आज तक जंग लगी हुई थी, लाचारी की जंग, लेकिन हकीकत ने आज इस जंग को उतार दिया है। अब इस तलवार में एक नई चमक पैदा हो गई है, विद्रोह की चमक शास्त्री जी, और आज ये तलवार तेरे अंत का कारण बनेगी शास्त्री।
5: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जंग लगी तलवार की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 5 दिवसीय प्रदेश प्रवास के पहले दिन आज बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके बाद भी ओंकारेश्वर के लिए रवाना होंगी। भारत और फ्रांस आर्थिक औद्योगिक सहयोग को प्रगाढ़ करने के प्रयासों के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। उन्होंने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुलिस में उप निरीक्षक के 10 एवं आरक्षक के 50 पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आज शाम को रानी दाई नाटक का मंचन किया जाएगा। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भोपाल के भारत भवन में 19 जून को शाम 7 बजे फ्रांस के संगीत बैंड की प्रस्तुति होगी। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर संभाग के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और भारत अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एक दिवसीय क्रिकेट मैच का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दिन का एक बजा है, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी सखी पूर्णिमा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, अगले कुछ मिनट्स मैं आपके साथ रहूंगी, तो सोचा क्यों ना प्रकृति से जुड़े विषय पर चर्चा करूं। सखियों, जरा कल्पना कीजिए एक खूबसूरत सी सुबह, जब आंखें मलते हुए खिड़की खोले तो ठंडी हवा का स्पर्श मिले, पेड़ों पर बैठे पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे, दूर तक फैली हरियाली आंखों को सुकून दे और वातावरण में ताजगी घुली हो। सखियों, इस अनुभूति को शब्दों में कहना शायद मुश्किल होगा। कहते हैं कि यदि धरती मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कान पेड़ों की हरियाली में दिखाई देती है। जब हवा पत्तों को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गुनगुना रही है। लेकिन आज यही प्रकृति हमसे आग्रह कर रही है, मुझे थोड़ा और हरा भरा बना दीजिए। सखियों, प्रकृति में सुंदरता अपने आप नहीं आती, इसके पीछे होते हैं पेड़, पौधे और उन्हें सहेजने वाले लोग। सखियों, हमें धरती की गोद में हरे भरे पौधे लगाने होंगे, जिससे आने वाले कल को ठंडी छांव, शुद्ध हवा और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनकर तैयार कर सके। सखियों, ये पेड़ वर्षा बुलाते हैं, बाढ़ को कम करते हैं, पक्षियों जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इनकी छांव में ठंडी हवा का एहसास कीजिए, बस आपका मन यही गुनगुनाएगा।

0: सखियों, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा बनाती है, वैसे ही पौधा लगाकर उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। घर के आंगन में लगा एक पौधा पूरे घर की शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली का साथी बन जाता है। सखियों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेने के लिए अब सुनेंगे वार्ता। विषय है पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार हैं सुश्री रश्मि शर्मा। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को सुरक्षित रखना। प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को लगातार प्रयास करना होगा। पेड़ लगाना, पानी बचाना, पुनर्चक्रण करना और प्लास्टिक का उपयोग ना करना जैसे सरल कार्य बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करके स्वयं को और सभी जीवित प्राणियों को सुरक्षित रख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकतानुसार ही उपयोग करना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। जल, ऊर्जा और प्लास्टिक के सही उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके भूमि और जल संसाधनों की बचत की जा सकती है। नदियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम जंगलों का संरक्षण करेंगे तो जीव जंतु सुरक्षित रह सकेंगे। सामूहिक सहयोग और जागरूकता के माध्यम से हम सभी मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। आज जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। हमारे पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी शामिल हैं और इन सभी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ों को काटना और नदियों में कचरा फेंकना, अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। पर्यावरण के संरक्षण को हमें हमेशा बनाए रखना है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। बिजली बचाकर, पानी का सही उपयोग करके, पेड़ लगाकर हम सभी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम हमारे चारों ओर देखें

तो ईश्वर की बनाई पर्यावरण की इस अद्भुत सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। पर्यावरण में सुंदर फूल मन को मोह लेते हैं, परंतु आज मानव ने विकास की चाह में पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। प्रकृति अर्थात पर्यावरण के द्वारा ही मनुष्य को भोजन प्राप्त होता है। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जिसमें मानव अपना जीवन व्यतीत करता है। नदी, झरने, सागर, पर्वत, जलवायु के सूक्ष्म तत्व भी पर्यावरण को निर्मित करते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्यदेव व संपूर्ण ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड भी पर्यावरण में आते हैं। ये सभी तत्व हमारे जीवन के अस्तित्व और विकास के लिए अनिवार्य हैं। हमें पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। इसके लिए हमें पर्यावरण के लिए को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मनुष्य ने अपने विकास के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही विभिन्न वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी, बरगद, नीम को महत्व दिया जाता रहा है। पेड़ पर्यावरण का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए हमें अपने जन्मदिन पर और विशेष कार्यक्रमों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मुख्य वृक्षों में हम जामुन, आम, अमरूद, बरगद आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। मैंने देखा है कि आम का पेड़ तो गमले में भी लग जाता है। हम सभी को ऑक्सीजन वृक्षों से ही मिलती है, अतः हमें सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण करने से मृदा का अपरदन नहीं हो पाता, क्योंकि वृक्ष की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ों को उनके चिकित्सा गुणों के लिए भी जाना जाता है। जैसे नीम का प्रयोग फोड़े फुंसी आदि के उपचार के लिए किया जाता है, इसी प्रकार तुलसी का प्रयोग सर्दी खांसी से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्जुन का पेड़ हृदय से संबंधित समस्याओं और ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत उपयोगी है। जो भूमि बंजर है उस पर भी हम सिंचाई की सहायता से वृक्षारोपण कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व है। वृक्षों से हमें फल, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ों से बहुत सारी औषधियाँ तैयार की जाती हैं जो हमें रोगों के उपचार में मदद करती हैं। पेड़ न केवल शुद्ध हवा प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को सुंदर बनाते हैं। पेड़ों पर पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं। पेड़ तपती धूप में हमें छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की कमी होने से मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा, इसलिए हम सभी का दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करें, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके और हम सभी एक खुशहाल जीवन जी सकें। मनुष्य ने पर्यावरण को कई प्रकारों से क्षति पहुंचाई है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हुआ। लकड़ी, कंडे, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन्हें जलाने से वायु प्रदूषण हुआ और इन वाहनों में CNG गैस का प्रयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। लकड़ी, कंडे के स्थान पर हमें प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो। मनुष्य ने जल को भी प्रदूषित किया है। जल में पूजन सामग्री विसर्जित करने से, उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में डालने से, जानवरों को जल में नहलाने से, इन सभी से जल प्रदूषित हो जाता है। हमें जानवरों को नदी जल में नहीं नहलाना चाहिए। हमें मुर्दों को नदी जल में नहीं डालना चाहिए। उद्योगों का कूड़ा कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। पूजन सामग्री जल में विसर्जित ना करके गमले में विसर्जित कर सकते हैं, जिससे जल प्रदूषित ना हो। रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, जो बड़े बड़े बमों का परीक्षण होता

0: परमाणु बमों का परीक्षण होता है जिसमें वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें परमाणु बमों का परीक्षण कहीं नगर से दूर एकांत जगह में करना चाहिए जिससे कि यह ध्वनि प्रदूषण ना हो। बड़े बड़े डीजे और लाउड स्पीकर तेज ध्वनि में बजते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इनकी आवाज मध्यम रखनी चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। उद्योगों में पुरानी मशीनें जो बहुत तेज आवाज करती हैं, इनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। गाड़ी में साइलेंसर ना होने से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अतः हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियंत्रित ध्वनि पर लाउड स्पीकर बजाने चाहिए। उद्योगों में नई आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कम आवाज आए, और गाड़ियों में साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोक सकें। इसी प्रकार मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा होने पर मिट्टी बह जाती है। पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी अपने पैरों से मिट्टी को ढोकर मृदा का अपरदन करते हैं। मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कतारबद्ध लाइन से पेड़ लगाने चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें जल, मृदा और वायु का संरक्षण करना होगा। यह सब कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम सभी को मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करने होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो। जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन हम चाहें तो हम उपयोगी वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन, अमरूद लगा सकते हैं और उन्हें सिंचित कर सकते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं। हम सभी हर कार्यक्रम में वृक्षारोपण करें ताकि पर्यावरण असंतुलन को कम किया जा सके।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, विषय था पर्यावरण संरक्षण। वार्ताकार थी सुश्री रश्मि शर्मा। सखियों, वास्तव में पौधारोपण एक अभियान नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा एक संस्कार है। जब कोई माँ अपने आंगन में पौधा लगाती है, जब कोई बेटी उसकी देखभाल करती है और जब पूरा परिवार उसे वृक्ष बनते हुए देखता है, तब केवल एक पेड़ नहीं बढ़ता बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता भी बढ़ती है। कहते हैं ना कि पेड़ धरती की मुस्कान है, इनसे ही जीवन की पहचान है। सखियों, आज गांव की चौपाल हो, विद्यालय का मैदान हो, खेत की मेड़ हो या घर का छोटा सा आंगन, हर स्थान एक नए पौधे की प्रतीक्षा में है। बहनों, यदि हम अपने जीवन के खास अवसरों को पौधारोपण से जोड़ दें तो विशाल परिवर्तन संभव है। संतान के जन्म पर एक पौधा, जन्म दिवस पर एक पौधा, विवाह की वर्षगांठ पर एक पौधा, बच्चों की सफलता पर एक पौधा और अपने प्रियजनों की स्मृति में एक पौधा। सखियों, तनिक विचार कीजिए, यदि प्रत्येक परिवार वर्ष में केवल 5 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करे तो हमारा पूरा क्षेत्र कुछ ही समय में हरा भरा हो जाएगा। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमें जीवन भी देते हैं। इन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं।

सखियों इस हरे भरे रास्ते से भरा हुआ गीत सुना और ये भी सच है, सखियों पेड़ अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि अपनी छाया, अपने फल और अपनी सांसों से संपूर्ण प्राणियों पर परोपकार करते हैं। सखियों, इनके परोपकार को याद करते हुए अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अंत में बस यही कहेंगे कि विकास की दौड़ में पर्यावरण और प्रकृति से दूर ना हो, जल जंगल और जमीन को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करके प्रकृति में संतुलन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो धरती मुस्कुराएगी, धरती मुस्कुराएगी तो जीवन मुस्कुराएगा। सखियों, हम आशा ही नहीं करते हैं बल्कि हमें विश्वास है कि आप आज से ही पर्यावरण संरक्षण की सहभागी बनेंगी, और इसी विश्वास के साथ अनुमति दीजिए अपनी सखी पूर्णिमा को। नमस्कार।

0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: भारतीय सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का प्रतिमा।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये दादरा

इस गारी गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शोभना कश्यप के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कोकिला दत्ता के गाए कुछ भजन, और आखिर में सुनिए ये तुलसीदास की रचना।

0: कबीर की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कोकिला दत्ता की गाए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न चोरी चोरी किया ले, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में सूरज का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर, उदित नारायण ने गाया था। फिल्म थी सातवां आसमां। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजातीय सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी व्यक्ति और समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति आज ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी और शाम की आरती में भी शामिल होंगी। इस दौरे में 21 जून को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 22 जून को कूनो नेशनल पार्क का दौरा भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि उनका प्रदेशागमन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की रणनीति से भी अवगत होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैतूल में ब्रह्म कुमारीज के कार्यक्रम में राष्ट्रपति की भागीदारी से आध्यात्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता होने के बहुत करीब है और यदि भारत पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में प्रमुख फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से इस योजना के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक शत्रु के समक्ष शीश नहीं झुकाया और मातृभूमि के सम्मान के लिए उनका बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री ने फ्लाइंग सिख और पद्मश्री प्राप्त मिल्खा सिंह को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान और विकसित भारत की पहचान है। इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है, जिसके तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल होंगे। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो रहा है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया नगर पालिका परिषद में जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता के अध्येता एवं इतिहास लेखक विजय दत्त श्रीधर को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत पुरानी छावनी के PM श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:00।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जल

0: भूमध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों के माध्यम से भेजी पसंद हम पूरी करेंगे इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी इंदौर से हमें पत्र भेजते हैं। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायाल, मैताला से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, करडा रिसोर्ड से सानवी देशमुख और सर्वद्र देशमुख, डोंगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनामिका अनिष्का और तन्मय गजबिये।

इसी गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव ने। विश्वात्मा फिल्म का गीत साधना सरगम का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, विजू शाह ने संगीत बनाया।

कार्यक्रम में अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव की ग्राम संदलपुरा से, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार की, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप की, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजब्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। सुनना पसंद किया है सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर ने इसे गाया है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं आशा रेडियो श्रोता संघ के मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर सिद्धांत, प्रिंस और एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित ध्वनि गवहाणकर परी की, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले की, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु करमरकर की, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर की, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश असलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया रोजमीन, तैमूर और तड़वी परिवार के सदस्य, एक लड़का एक लड़की फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया है, मजरू ने बोल लिखे हैं, आनंद मिलन की धुन है।

कार्यक्रम में अगली ख्वाहिश शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी और सौरभ शर्मा की, शाइना और निवान भी इनके साथ हैं। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे की, रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार छत्तीसगढ़ बनियापारा धमतरी से ये पत्र हमें भेजता है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया हमें ये पत्र भेजते हैं। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली की, प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल और प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा की, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ, समीर के बोल है, नदीम श्रवण ने धुन बनाई है।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए फिल्म दिल है के मानता नहीं के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति प्रदेश के सफल चीता प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगी और सिकल सेल एनीमिया से निपटने की राज्य सरकार की नीति से भी अवगत होंगी। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। प्रदेश में मानसून 22 से 24 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। प्रदेश में मानसून से पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष के अंतर्गत आज सुनिएगा विरासत। आपकी फरमाइश कार्यक्रम रात्रि 10:00 आप सुनेंगे और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत डॉक्टर अनामिका पंडे से ग्रामीण महिलाओं के विकास में अग्रसर शासकीय योजनाएं विषय पर की गई भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:01:33 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है।

0: मीडियम वेव 1513 किलो हर्ट्ज के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। शाम के 5 बजने को है अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण आरंभ होता है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि AI एक परिवर्तनकारी शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना भी होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। प्रदेश में मानसून के पहले गर्मी का असर भी बढ़ता दिख रहा है और अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी। आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक।
1: और मैं हूं मेघा राय।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, जब इरादे मजबूत होते हैं तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जिंदगी में कभी उदास ना होना और कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना।
1: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो हमारा पहला प्रश्न है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है।
0: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का, जो है फिल्म बॉर्डर 2 से, जिसे गाया है दिलजीत दोसांझ, सचित टंडन और परम्परा।

0: सनाया, क्या तुम भी मानती हो कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है? उनमें एक अलग एनर्जी होती है, उनके नए विचार होते हैं और बदलाव लाने का जुनून भी अलग ही होता है।
1: बिल्कुल सही कहा मेघा तुमने, पर मेरा मानना यह भी है कि हर युवा का व्यक्तित्व विकास अत्यंत आवश्यक है। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, ऐसे में युवाओं का होलिस्टिक डेवलपमेंट देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, कुछ खास बातें इस बारे में ध्यान रखना, मानना, जानना भी जरूरी है, जैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, अच्छी संचार कला विकसित करना, नियमित पुस्तक पढ़ना, समय प्रबंध सीखना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना है।
1: जब युवा अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं तो वे न केवल अपने करियर में सफल होते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनका ज्ञान, उनका थॉट प्रोसेस, उनका नजरिया, उनकी सोच और ऑफ कोर्स उनका पावर सभी मायने रखता है।
0: दोस्तों, हम सबके भीतर असीम संभावनाएं छिपी होती हैं। आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने, सही दिशा देने और निरंतर निखारने की है।
1: तो विश्व के सबसे बड़े युवा देश के शक्तिशाली युवाओं को अपनी शक्तियों को जागृत करने और देश के विकास में सीधे जुड़ने की प्रेरणा खुद को खुद से लेनी होगी। और चलिए, इस प्रेरणा के लिए यह गीत बड़ा ही अप्रोप्रिएट बन पड़ता है। तुमेघा सुने और सुनाए ये गीत, जो लिया गया है फिल्म सूरमा से, जिसे आवाज दी है शंकर।

0: कहते हैं कि कुछ कहानियाँ सिर्फ इतिहास नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर अमर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल मेघा, और जब बात साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की हो तो एक नाम पूरे गर्व के साथ हमारे सामने आता है। एक ऐसी वीरांगना जिसने न केवल किसी राज्य की रक्षा के लिए बल्कि पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
0: आज के हमारे विषय प्रेरक व्यक्तित्व में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और एक युवा रानी ने अपने साहस से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ दी थी।
1: वह रानी जिसने दुनिया को बता दिया कि हिम्मत का कोई लिंग नहीं होता और देश प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
0: जी हाँ, आज की हमारी प्रेरणा है झांसी की शान, वीरता की पहचान और भारत की अमर नायिका रानी लक्ष्मीबाई।
1: तो आइए सुनते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी।
0: 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही बेहद साहसी और निडर थी। जहां उस समय लड़कियों को घर में काम सिखाए जाते थे, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखती थी।
1: बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई देती थी। उनकी यही विशेषताएं आगे चलकर उन्हें इतिहास की सबसे महान वीरांगनाओं में शामिल करने वाली थी।
0: समय के साथ उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं। झांसी की रानी बनने के बाद उन्होंने अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखा और जल्द ही लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया।
1: लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उनके पुत्र का निधन हो गया और फिर महाराजा गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह रानी लक्ष्मीबाई के लिए बेहद कठिन समय था।
0: रानी ने एक बालक को गोद लेकर उसका नाम दामोदर राव रखा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज झांसी को अपने अधिकार में लेना चाहते थे।
1: यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया। अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
0: 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। झांसी भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
1: रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और स्वयं सेवा का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों का उत्साह और कई गुना बढ़ गया।
0: जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। वे युद्ध भूमि में स्वयं उतर गईं और अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी।
1: कहा जाता है कि अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वे घोड़े पर सवार हुई और युद्ध करती रहीं। यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है।
0: हालांकि परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ग्वालियर तक संघर्ष जारी रखा और अंतिम समय तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहीं।
1: 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। उनका साहस, उनका आत्मसम्मान और उनका देश प्रेम के लिए जो जज्बा था, आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे यह गीत जो था फिल्म मणिकर्णिका से, जिसे गाया शंकर महादेवन ने।
1: दोस्तों, अक्सर हम बचपन से सुनते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या यह सफलता का रास्ता सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है?
0: बिल्कुल नहीं मेघा, आज का दौर अवसरों का दौर है। अब शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करना और खुद के लिए रोजगार पैदा करने की ताकत भी बन चुकी है। एक ऐसा विषय जो युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की प्रेरणा देता है।
1: दोस्तों, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल किताबों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग जीवन में करना भी है।
0: यदि किसी छात्र ने कंप्यूटर की पढ़ाई की है, तो वह फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कई काम भी शुरू कर सकता है। और अगर किसी ने फैशन डिजाइनिंग पढ़ा है, तो वह अपना बुटीक भी ओपन कर सकता है।
1: यानी शिक्षा हमें केवल नौकरी के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी देती है।
0: आज हम ऐसे कई युवाओं को देखते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपना व्यवसाय का आधार बनाया। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, किसी ने अपना स्टार्टअप बनाया, तो किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने हुनर को पहचान दी।
1: स्वरोजगार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम कर सकता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नई संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं।
0: हालांकि शुरुआत में चुनौतियां भी आती हैं। पूंजी की कमी, अनुभव की कमी या असफलता का डर कई लोगों को रोकता है।
1: लेकिन याद रखिए, हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं।
0: अगर हम अपनी शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ दें, तो स्वरोजगार के अवसर और भी बढ़ जाते हैं। आज सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
1: आज का युवा अगर अपनी शिक्षा, तकनीक और रचनात्मकता को एक साथ जोड़ ले, तो वो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
0: और यही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आज के विषय से हमें यही सीख मिलती है कि शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन ना समझें,
0: और इसी नई शुरुआत, नए सपनों और आत्मनिर्भरता के जज्बे को सलाम करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्रेरकदायक गीत फिल्म केदारनाथ से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछे थे और उनका जवाब जानने का समय हो चला है। पहला सवाल था, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? सही जवाब है राजस्थान।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है भारतीय डाक विभाग। इन्हीं विचारों के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
0: और मैं हूँ मेघा राय।
2: स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: बदलो बदलो आदत।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्न

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है आज और कल से। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और रवि का संगीत है। फिल्म का नाम आज और कल।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आज आपकी कसम से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है। आर डी बर्मन का संगीत है। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आखिर में मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म आप आए बहार आए से। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत, यह है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर।
1: थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
3: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं और ये समय होता है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री अवसंरचना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित जनजाति सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। श्री प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और क्षमता के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। और हॉकी में भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड में जारी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी का
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वो गीत चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, लेकिन सदा मन में समाए रहते हैं, यानी सदाबहार गीत। सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर और मैं हूं आपके साथ रजनी। शुरुआत करते हैं लाल पत्थर के गीत के साथ, आवाज है किशोर कुमार की।

इस लोकप्रिय गीत के साथ विराम देते हैं आज के सदाबहार गीत को। रजनी को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में सुन सकते हैं आप संस्कृत में समाचार।

0: श्रोताओ, आज बैतूल नगर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयासों से आध्यात्मिक जागृति से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण इस विषय पर महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हेलीपैड पर अगवानी की। तत्पश्चात कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला समारोह स्थल पर पहुंचा। आयोजन स्थल पर श्वेत भव्य वर्षारोधी मजबूत पंडाल लगाया गया था, जिसमें लगभग 4000 लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। सभी के प्रवेश हेतु अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। सुरक्षा कर्मी सघन जाँच और एंट्री पास देख कर ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे थे। मंच पर विशेष अतिथियों के बैठने की सुरुचिपूर्ण व्यवस्था की गई थी। यहां पहुंचकर महामहिम द्वारा कार्यक्रम स्थल पर वृक्षारोपण एवं ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों के साथ फोटो सत्र भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और विकास की झलक भी देखने को मिली। यहाँ बैतूल की अनूठी स्थानीय कला, हस्तशिल्प और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करती हुई विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। साथ ही वन विभाग द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण, वनोपज और जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को जीवंत रूप से दिखाया गया था। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के गायन से हुआ। फिर मंच पर विधिवत दीप प्रज्वलन किया गया तथा मंच पर उपस्थित सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी का शॉल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसके बाद पीके मंजू दीदी, संचालक बैतूल मध्य प्रदेश द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया गया।
1: आज हम सभी के लिए

विशेष बैतूल वासियों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, बहुत खुशियों का दिन है। मैं बताना चाहती हूँ, आज से 2 साल पहले मैंने एक छोटा सा सपना देखा था। सपना तो बहुत बड़ा था, दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई थी। दिमाग ने कहा था असंभव, लेकिन दिल ने कहा था संभव। और इतनी इन खुली आंखों से मैंने जो सपना देखा था, आज वो सपना हम सबके सामने साकार हो

0: इस अवसर पर जोनल संचालक मध्य प्रदेश बी के शैलजा दीदी ने कहा,
1: आज हम सभी बहुत सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आपकी जड़ी बूटियां जीवन दान देने वाली हैं। जड़ी में दवा और श्रद्धा में दुआ, ये कहावत भारतीय संस्कृति की आस्था और ईश्वर में विश्वास का परिचायक है। हमारे आदिवासी भाई बहनों की ये परंपरा कि हर शुभ अवसर पर नीम, महुआ, पीपल, बरगद जैसे वृक्षों को रोपने की, इन्होंने ही जंगलों को जीवित रखा हुआ है। जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखना और उनके गहरीकरण के प्रति जागरूक रहना, ये आपका दिव्य कर्तव्य रहा है। ऐसे आदिवासी समाज के जागृति क्या केवल भौतिक विकास द्वारा संभव है, या इसके लिए आध्यात्मिक जागृति आवश्यक है? आध्यात्मिकता हमें स्वयं के अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा के मूल गुणों से परिचित कराती है। मूल गुणों में शक्ति है।
0: कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री दुर्गादास विके ने अपने उद्बोधन में जनजातीय समुदाय हेतु सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की।
2: आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। सबसे पहले मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल की ओर से भारत की प्रथम जनजातीय महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओडिशा के एक छोटे से जनजाति गांव में जन्मी एक साधारण बालिका का भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, संविधान की महानता और सामाजिक समरसता की अद्भुत मिसाल है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की अद्वितीय मिसाल है। आपने अपनी कर्मठता, धैर्य और सामाजिक उत्थान के प्रति अटूट संकल्प के बल पर न केवल उच्चतम संवैधानिक पद को सुशोभित किया है, बल्कि देश की हर बेटी, हर वंचित वर्ग और समाज के हर नागरिक के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है। आपका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज जब आप बैतूल की इस जनजाति बहुल भूमि पर पधारी हैं, तब यहाँ का प्रत्येक जनजाति परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। महोदया, आपकी अंतर्वेदना और देश की जनजातियों के प्रति अथाह संवेदनाओं के फलस्वरूप धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन आदि कर्मयोगी, संसदीय संकुल विकास परियोजना, सिकल सेल एनीमिया, टीबी जैसी अनुवांशिक बीमारियों के प्रति ठोस कार्य योजनाएं बन सकी हैं।
0: मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अपने संबोधन में कहा,
3: राजयोग और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है वो अब मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ यहाँ नीचे में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी बहनें देखी, यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज के भाई बहन बैठे हैं। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जीवन में हमको शांति चाहिए। पहले पैसा की बात करो, मगर मन को शांति मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। मन को शांति मिलेगी, धार्मिक भावना होगी तो हम नीति से चलेंगे और भगवान को भी वो पसंद है। इसलिए मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिकता भी ध्यान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे।
0: राष्ट्रपति जी द्वारा कलश एवं ध्वज स्थापना द्वारा महासम्मेलन के शुभारंभ

0: आध्यात्मिक जागृति आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का मूल आधार है। अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली इन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का एक अवसर देती है। इस बात को रेखांकित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा,
1: उपभोग की संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के बल पर दीर्घकालीन रूप से समतापरक आचरण पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशीलता जीवन शैली विकसित की जा रही है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है।
0: आध्यात्मिकता आदिवासियों की जीवन शैली में नैसर्गिक रूप से बसी है। इस बात पर बल देते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा,
1: जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही आध्यात्मों की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभों से ही ये धरा पे रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। वो प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं।
0: राष्ट्रपति जी आगे कहते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, यह उनकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है।
1: धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते, धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं, सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा

0: आत्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता है। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुंदर नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं।
1: अपने उद्बोधन के अंत में बैतूल जिले और उनके निवासियों के स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा,
0: मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे हैं। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेश की विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूं तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगायन के सामूहिक गायन से संपन्न हुआ। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को हेलीपैड पर गरिमामयी विदाई दी गई। अन्य अतिथिगण भी अपने अपने गंतव्य स्थलों की ओर चल पड़े। श्रोताओं, ये थी महामहिम राष्ट्रपति के एक दिवसीय बैतूल प्रवास की रेडियो रिपोर्ट। वाचक योगेश्वर, संकलन प्रवीण चौरे, तकनीकी सहयोग कांता प्रसाद टिकारे और अशोक सोनारे, और प्रस्तुतकर्ता सचिन भागवत।

अभी आप सुन रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आयोजित कार्यक्रमों की रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी बैतूल का योगदान था और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किया गया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आया सावन झूम के फिल्म का गीत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: डॉन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, और हम आप याद दिला दें कि 8:35 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। आप सुन रहे ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी, आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां पारंपरिक तरीके सीमित साबित होते हैं वहां नवाचार प्रभावी समाधान प्रदान कर सकता है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्धियों के माध्यम से मानव क्षमता की नई सीमाओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। श्री मोदी ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट विल एक्सपेंड अवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट विल ओपन अप मेनी पाथवेज फॉर द एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने

0: कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मीनाक्षी हुडा विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर चुकी हैं। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज और कल के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 8:35 पर, 9:15 पर और रात 10 बजे आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे SL कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले। अब कल यानी शुक्रवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं जो आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होंगे। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम कल आप सुनेंगे दिन में 12 बजे 2:30 पर और रात 10:30 पर। बारह बजकर 30 मिनट पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे भुवन मोहिनी की पहली कड़ी। एक बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं कल दोपहर 2 बजे 5:33 पर 6:30 पर, रात 8:35 पर और 9:00

45 मिनट पर। कल शाम 6 बजे आप सुन सकते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे सेवा

0: वार्ता फीफा वर्ल्ड कप में टीमों का प्रदर्शन, वार्ताकार हैं आलोक कुमार चतुर्वेदी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे सारंग फगरे का ख्याल गायन, राग होगा बागीश्री। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। और अब नजर डालते हैं कल सुबह प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सवेरा 8:30 पर। सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे गांधी चर्चा। और 9:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10:00 जिले की चिट्ठी। और 10:05 पर फिर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 10:15 पर कल आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर जिला खंडवा में आयोजित कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। और कल शाम 7:21 पर आप सुन सकते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस। 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन इंदौर पहुंचने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैतूल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए देश का कोई भी समुदाय विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए।
1: 2040 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ओंकारेश्वर क्षेत्र को 19 जून तक नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे के दौरान आज कई शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने मिस्ट्रल एआई के सीईओ आर्थर मेंट्स से भारत के बढ़ते एआई इकोसिस्टम पर, एलस्टॉर्म के सीईओ

0: मार्टिन सीएन से रेलवे आधुनिकीकरण पर और सेंट गोबेन के चेयरमैन बेनोइट बाजिन से निर्माण सामग्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। तीनों कंपनियों ने भारत में और अधिक निवेश तथा विस्तार की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि सरकार ने पेयजल, स्वच्छता, नदी संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के एक लेख को साझा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की परिवर्तन गाथा देश के युवाओं की भी गाथा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान स्कूल चले हम अभियान के तहत बड़ा गणपति स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित अत्याधुनिक खगोली प्रयोगशाला का निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने दूरबीन, रॉकेट मॉडल और नक्षत्र ट्रैकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में निर्माणाधीन आईटी पार्क 3 का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी और सेवा क्षेत्र का केंद्र बनाना उनकी सरकार का संकल्प है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया कि 20 जून को देशभर में पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे।
1: 20 जून पीएम किसान उत्सव दिवस, इस दिन 3:45 पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए, लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं और अभी 20 तारीख को फिर 18,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ हमारे देश भर के किसानों के खाते में ये निधि अंतरित करके दिया जाएगा।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश के सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में नक्सलवाद उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर एक रिपोर्ट।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से EPFO के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को लाभ मिलेगा और इस महीने के अंत तक खातों में ब्याज राशि जमा होने की संभावना है। प्रदेश का खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को तलाशने के लिए टैलेंट सर्च महाअभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत 8 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन 17 जून से शुरू हो चुका है और चयन प्रक्रिया 27 जून से आरंभ होगी। इस अभियान में एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती, बॉक्सिंग और तीरंदाजी समेत कुल 21 खेल विधाओं के ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल ग्रुप ए के मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जिसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 रन ही बना पाई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी आईटीआई में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विभाग के डीएसडी पोर्टल पर 30 जून तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। सीहोर के बिल्किसगंज सांदीपनी विद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं। अशोकनगर जनपद पंचायत ईसागढ़ में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। गुना में पॉली हाउस एवं गुलाब की उन्नत खेती पर विशेष प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। शाजापुर जिले के राजीव गांधी महाविद्यालय काला पीपल के सभागृह में आज सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जबलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के द्वारा आज राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को नूतन खेल परिसर स्टेडियम मंदसौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धार जिले के बदनावर में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन हुआ और नीमच डाक संभाग के द्वारा 20 जून को डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में एआई, रेलवे और निर्माण क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में शासकीय कन्या विद्यालय की खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। आईटी पार्क 3 का भी लिया जायजा। और 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस, 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगी सम्मान निधि की 23वीं किस्त। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम समय बारे सभी भैया बहनों को धर्मू की राम राम और संग में बैठी रूमी बहन आपको भी हमारी राम राम
1: राम राम धर्मू भैया राम राम और सगा जो कार्यक्रम सुनना है हमारे भैया बहन बिन के लाने भी हमारी सुई राम राम।
0: देखो भैया आजकल अभी भैया को इंतजार है पानी को।
1: हाँ भैया,
0: क्योंकि भैया जो है सबने तैयारी कर रखी है कि अपने खेतन में बस खाद और बीज रख रखे हैं और पानी अगर बरस जाए कहीं कहीं तो अच्छा पानी गिर रहा हो
1: कहता
0: हूँ। हाँ कहीं कहीं भैया पानी गिर रहा हो और कहीं कहीं नहीं गिर रहा हो, लेकिन मौसम में बस यही है कि जल्दी से जल्दी मौसम में पानी को इंतजार है और पानी गिर रहा हुआ है, तो भैया कहीं नहीं गिर रहा हो तो उनको इंतजार खत्म भी होगा क्योंकि भगवान सबकी
1: सुनेगो। और भैया अपाई जो किसान भैया बहन है वो अपाई बुवाई कर देंगे।
0: हाँ,
1: बस ये है कि अपाई किसान भैया बहन को सगाई तैयारी करके रखना चाहिए।
0: हाँ, बस जोन भैया अगर नहीं तैयारी कर पाए तो हम उन भैया से यही कहेंगे कि अपाई कटे फटे बीज है छांट के बिल्कुल साफ सुथरे कर लें, एकदम तैयार रखें, अपाई खाद लेके तैयार रखें और भैया अपन जहाँ तक हो सके वहां तक एक दो पेटी वाली सिड्रिल जो आते हैं बासे ही बोनी करें, जिससे कि अपाई खाद और बीज एक साथ अपनी बुवाई होगी और कतार से कतार में सीधी लाइन में बुवाई हो चली जाएगी, जिससे कि अपन जो खरपतवार उगत है ना तो बामे अपन को परेशानी नहीं आउट है। कैसे कि भैया दूरी बनी रहते है, कतार से कतार में सीधी बुवाई होता है तो बीच में जो अपनी जो खरपतवार उगत है तो बाय अपन या तो जुताई गुड़ाई करके अपन निकाल सकते हैं और नहीं तो अपन भैया अपन कीटनाशी दवाइयों को छिड़काव करके भी रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो पहले तो अपन देसी दवाओं का उपयोग करके खरपतवार को नष्ट करेंगे।
1: तो यही कहेंगे आप भैया से कि वे जो है जो बुवाई करें तो वो सीड ड्रिल के माध्यम से करें।
0: हाँ,
1: और भैया देखो
0: हाँ
1: ना करें जैसे कहा होते बीज की बर्बादी भी हो जाते हैं और फसल के जो पौधा है वो घने हो जाते हैं, जैसे कहा होते
0: बिन
1: हाँ के तंग बेगरी हो जाते हैं तो जो

0: अपन जो घनी होते तो वहाँ पे जो बाहर में अच्छे से फल नहीं आ पाते हैं, फल ही नहीं आ पाते हैं। तो ये जई बात को अपन को ध्यान रखना है कि सीड ड्रिल से अपन के लिए बुवाई करनी है। और भैया देखो, अपनी जो सरकार है बाकी 12 साल पूरे हो गए हैं, तो भैया जिन 12 सालन में ऐसी कई मुलक सारी योजनाएं चलाई गई जनहित के लाने, जैसे कि जो हर कोई हर वर्ग को व्यक्ति अपो जो जीवन है बाको बेहतर बना सके, जीवन को बेहतर बना सके लाभ लेके योजना उनको,
1: जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी।
0: भैया जी जब कोरोना काल के समय चलाई गई थी, ऐसे के बाद समय कहा तो के एकदम से अर्थ जो लोगों के जो आर्थिक
1: बंद हो गई थी।
0: हाँ,
1: तो काम धंधे रोजगार पे बंद हो गए थे। भैया खावे पीवे की व्यवस्था के लाने सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण करो तो
0: करवे के लाने जो योजना चलाई गई थी,
1: और
0: हाँ जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी,
1: हाँ उनकी व्यवस्थाएं के लाने उन्होंने कम से कम देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को, जो जरूरतमंदों को 5 kg मुफ्त खाद्यान्न, मतलब दावत तो जिसमें चावल है या गेहूं या मोटे अनाज,
0: हाँ एक व्यक्ति के हिसाब से दावत तो,
1: हाँ
0: और भैया सरकार ने जो भी व्यवस्था रखी थी कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, तो यानी कि जो उनके पास राशन कार्ड है तो कहा है कि लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो उनको कहा है कि राशन कार्ड हो पे बिन के लाने जो राशन मिल रहा हुआ
1: तो भैया बामे अपने पहचान पत्र देने हो तो जिसमें राशन कार्ड लग रहा हो तो, और जामे आवेदक को अपन को किसी भी राज्य में हो या किसी क्षेत्र में हो, उनको भैया अपने गरीबी रेखा को या बीपीएल कार्ड भी जहाँ काम कर रहा हो तो बीपीएल कार्ड के द्वारा मिल रहा हो तो भैया इन गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अनुसार या तो हर महीने एक परिवार हो तो उनको 35 किलो अनाज मिला था, तो
0: वो पर व्यक्ति के हिसाब से कि प्रति व्यक्ति उनके कितने सदस्य 5 किलो के हिसाब से मिल रहा हुआ
1: तो अपन को जामे सरकार ने इतनी सहायता कर रही हो, आज भी वो सहायता चल रही है।
0: हाँ भैया, और अपने बहुत से भैया जाको लाभ ले रहे हैं, अगर कौन भैया छूट गए तो वो है ना राशन कार्ड के लाने आवेदन कर सका थे।
1: और बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं तो भैया वो अपने परिवार में राशन कार्ड में नाम लिखाएं और राशन कार्ड के द्वारा वो अपनी जामे अनाज की बढ़ा सका थे।
0: और भैया देखो, अब अपन जो उम्मीद कराते हैं कि अपन भैया को जो बातचीत समझ में आई हुई है, और अब अपन जय उम्मीद के संगत जा चर्चा को इतना ही विराम देते हैं और सुनाते हैं जो जरूरी संदेश।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: तो देखो बेना, अपन ने संदेश सुन लिया।
0: हाउ या
1: ना, और अपन भैया से देखो अब बात करें कछु
0: अक्षय ऊर्जा के बारे में। भैया तो जैसा कि भैया नाम से ही जान पड़ा था, अक्षय ऊर्जा यानी कि जाको कभी छे ना हो, हाँ, और भैया अगर जो खत्म होगी तो जो संसार के संगे ही खत्म हुई है।
1: और ये कहा है कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान या प्रदूषण
0: नहीं पहुंचाते।
1: सबसे बड़ी बात है कि अब पर्यावरण सुरक्षित है, यही एक सबसे बड़ी विशेषता है जामे भैया। और जहाँ में देखो सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से सोलर पैनल द्वारा बनाई जावे वाली रोशनी
0: बनाई, यानी कि जो भी प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त एक ऊर्जा है भैया, जो मान लो जैसे सूरज से प्राप्त है,
1: पवन ऊर्जा है,
0: बायोगैस ऊर्जा है, जे सभी ऊर्जा जो है

0: है अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं।
1: अब जैसे बायोगैस की बात करें तो जैविक कचरे से गोबर आदि से प्राप्त कर सकते हैं अपन जो ऊर्जा, है ना। तो भैया देखो, अपन को जा में अच्छे ऊर्जा को अपन इस्तेमाल करेंगे,
0: अपन के लाने बस जग जब अपन जा को इस्तेमाल जब कर सकेंगे, जबकि अपन का है कि संयंत्र लगवाएंगे। हाँ। अब अपन ने देखो संदेश भी सुनो सौर ऊर्जा को। हाँ। कि सोलर अपन जो है पैनल लगवाए, है ना। अपन ने जो आप देख रहे होंगे छतन पर जो प्लेटें लगी रहते हैं कांच की।
1: हाँ, जहाँ में सरकार ने सब्सिडी दे रखी है,
0: सब्सिडी सही दे रखी है,
1: किलो के हिसाब से हर तरह से अलग अलग सब्सिडी दे रखी है। तो भैया आओ, जहाँ में बैंक द्वारा फाइनेंस भी हो जाऊ थे जे, और अब पहलाने सब्सिडी भी मिल जाऊ थे। तो ऐसे भैया किस
0: और अब सबसे और बिजली को बिल कम हो जाते हैं,
1: बिजली को बिल बिल्कुल नाम मात्र को रह जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं आउट है मान लो। तो भैया जो कितने फायदे हैं जहाँ में अपन खो अगर अपन जी सौर ऊर्जा को उपयोग
0: कराते हैं तो,
1: और जिससे एक तो अपो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अपो बिजली की बचत हो गएगी, और दूसरी बात अपाई लाने किसी भी तरह से कोई भी कोई मानसिक परेशानी नहीं
0: हुई है। और भैया जब अपो पर्यावरण अच्छा हुई है तो अपन अपो जो सगाव जीव जगत है वो भी सुरक्षित हुई है।
1: हाँ, और है एक बार प्लांट लगने के बाद जाको मतलब उपयोग अपन लगभग मुफ्त ही मान लो।
0: हाँ, बस एक बार अपन के लाने पैसा लगावे की जरूरत है,
1: वो भी किस्तन में देने,
0: किस्तन में देने, और बाकी को पैसा तो भैया सरकार के द्वारा अपन के लाने सब्सिडी के रूप में मिल ही रहा है।
1: तो भैया आओ, जा पे अपन विशेष ध्यान दें और अपन जाको उपयोग करें जिससे कि अपन ये परेशानी दूर हो जाए।
0: और भैया
1: चौपाल कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा, तो सब भैया बहन का जय धर्मू और
0: रूही बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
1: परंतु सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
2: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान, जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम संगे बारे सभी भैया बहन को धर्मू और संग में बैठी रूही बहन, आपको भी हमारी राम राम।
4: राम राम भैया, राम राम।
5: और भैया देखो, जा समय हमारे भैया बिल्कुल लगे भये हैं इंतजार में कि कब हमारा पानी बरसे और अपन बोनी कर ले।
4: हाँ भैया,
5: और देखो अपन तो देखते हैं कि अपनी प्राकृतिक आपदाओं का भी अपन देखा थे। देखो भारत सरकार द्वारा अगर आज अपन बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में अपन फसल नुकसान की भरपाई करवे के लाने, यानी वित्तीय सहायता देवे के लाने प्रमुख योजना चला रखी है।
4: हाँ भैया, पहले क्या होता तो कि अपन जो किसान भैया है वो अपन जैसे कोई साहूकार से पैसा लेता तो
5: नुकसान,
4: और बाकी वो फसल कटाई पे
5: नुकसान हो जाता तो बाकी भरपाई कछु नहीं होती,
4: कछु नहीं होता थी।
5: और अब कहा है कि भैया ऐसे में बीमा के द्वारा अपने भैया खो जामे अपनी भरपाई के लाने मुआवजा मिल जाता,
4: मुआवजा मिल जाता, यानी कि फसल को कौन भी प्राकृतिक आपदा से कौन तरह को नुकसान होते तो बाकी जो आर्थिक हानि होते बाकी भरपाई हो जाते।
5: जैसे किसान भैया खरीफ फसल के लाने 2%
4: देनो पड़ा था।

0: या फिर रबी फसल के लाने 1.5%, और बागवानी और व्यावसायिक फसल के लाने 5% की प्रीमियम
1: देनो पड़ा था भैया
0: तो
1: जान।
0: भैया अपाई पूरी फसल को यानी कि कवरेज सुरक्षा पूरों को
1: यानी कि अपाई जो फसल है वो सुरक्षित हो जाते हैं
0: बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक,
1: कटाई के बाद
0: जो
1: तक
0: भी जोखिम होते हैं यानी सूखा पड़ रहा हो या बाढ़ आ रही है या ओलावृष्टि हो रही है, चक्रवात आ रहा हो या कीटों का हमला हो रहा हो, कोई भी नुकसान हो रहा हो तो बाई जे कवर करते हैं।
1: हाँ तो अपाई जो किसान भैया बहन है वो अपाई फसल बुवाई से लेके जो अपाई फसल को बीमा करा सकते हैं।
0: हाँ फसल बुवाई से और कटाई तक को जामे अपा पूरा कवरेज रहते हैं। और जामे भैया ऐसे ओलावृष्टि या भूस्खलन या जल भराव जैसी व्यक्तिगत खेत स्तर की आपदाओं का भी आकलन करके मुआवजा दव जाओ।
1: तो भैया देखो अब चाहे अपन फसल बोंगे तो कछु होए अपन के लाने अपाई
0: हाँ,
1: फसल
0: तो
1: से
0: अपन
1: नुकसान
0: लाने
1: नहीं
0: मतलब
1: होगा।
0: अब अपन पहले सोचते कि भैया अब तो भैया ओला गिर गए फसल को
1: हाँ
0: नुकसान होगा, तो अब कापो तो जो लगत लगी हती वो भी चली गई।
1: अब देखो भैया आप जब फसल बीमा कैसे करवा सकते हैं, तो भैया जब भी जो रबी की फसल की बुआई होते खरीफ फसल की बुआई होते तो बार टाइम पे जो है जो जाको पंजीकरण होते
0: हाँ
1: है ना, कुछ निश्चित सब समय अवधि होते वहाँ में अपन के लाने आप जो फसल अपन बो रहे हैं बाको या बोई बाको अपन को बीमा करवाना होते। तो जी में कहा है कि भैया अपन के लाने आप जैसे जोन भैया के पास
0: ऑनलाइन भी हो
1: केसीसी,
0: जाऊत है
1: हाँ
0: या
1: जो
0: भैया
1: ऑफलाइन भी
0: कृषि,
1: हो जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: कृषि कार्यालय द्वारा या स्थानीय जन सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन या दोनों माध्यमों के लाने अपन आवेदन कर
1: कर
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं देखो भैया जॉन भैयान के पास केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बिनकी तो स्वतः ही
0: हो
1: जामे
0: जाऊत है
1: फसल बीमा हो जाते हैं। और जॉन भैयान के पास केसीसी नहीं है वो जो है
0: तो वो
1: ऑफलाइन
0: वहां
1: ये
0: में अपने
1: आवेदन,
0: आवेदन या
1: हाँ
0: दस्तावेज जामे लगाते, देखो पहचान पत्र है,
1: पहचान
0: आधार
1: पत्र,
0: कार्ड या
1: हाँ
0: वोटर
1: भैया
0: कार्ड आईडी है, या फिर अपने भूमि को विवरण, खसरा नंबर या खाता नंबर भूमि कोई
1: और
0: अपन
1: जो अपन
0: को,
1: फसल बो रहे हैं बाको प्रकार।
0: हाँ तो वो सब चीजें अपन को जामे दस्तावेज देने पड़ते हैं, और बाकी बाद अपन जामे फसल को बीमा हो
1: बीमा
0: जाते हैं।
1: हो कवर हो जाते हैं। और भैया जो अपन जितेक फसल को जितेक रकबा को बीमा करवाएंगे वह बीमित को फसल को पूरा पैसा अपन के लाने मिला थे।
0: अब फसल की बुवाई को प्रमाण सिर्फ पटवारी या कृषि अधिकारी से प्राप्त करके बैंक खाता या पासबुक पर सीधे ट्रांसफर अपन हो
1: अपन
0: जाते
1: सीधे
0: हैं,
1: खाते में आ जाते
0: पैसा
1: हैं।
0: आ जाऊत है। तो
1: हाँ
0: भैया
1: तो
0: अब अपन
1: अपन भैयन से यही कहेंगे कि जोन भी फसल बोए रबी की खरीफ की या व्यावसायिक फसलें ले रहे हैं तो आप जो है अपनी फसल को बीमा करवाएं।
0: जरूर
1: और बात
0: करवाएं,
1: जहाँ में प्रीमियम ऐसा कौन ज्यादा नहीं है
0: ज्यादा
1: भैया,
0: नहीं है बिल्कुल,
1: हाँ
0: नाममात्र की प्रीमियम है बिल्कुल, क्योंकि जहां में सरकार अपन देते
1: हाँ
0: प्रीमियम,
1: सरकार पूरा जमा करा थे वहाँ
0: तो
1: में।
0: इसलिए अपन को भैया जहां में लाभ ले वो चाहिए, और अपन को नुकसान से बचवे के लाने जे बीमा जरूर कराना
1: कराना
0: है
1: चाहिए।
0: ना। अब है
1: और
0: ना अपन,
1: हाँ भैया देखो अपा भैयन को जो बातचीत पसंद आई हुई है, और भैया देखो अपन अपाए कार्यक्रम में कोनू न कोनू ऐसी बातचीत लेकर आते हैं जो जो की जानकारी अपाए अतिथि विशेषज्ञ देते हैं। तो भैया जय क्रम में आज अपन एक भेंटवार्ता लेकर आए हैं जी को विषय है सेवा के 12 साल, विगत 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उन्नति और आगामी संभावनाएं। और भैया जी विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव, और जिनसे बता रहे हैं अपाए भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल।
0: तो भैया सुनाते जी जानकारी।
2: किसान साथियों, जैसा कि विदित है, भारत ने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के पश्चात लगातार तरक्की की है और उत्तर उत्तर प्रगति की है, लेकिन ये भी तय है कि बीते एक दशक में लगभग 10 से 12 साल में हमने कुछ नए, या यूं कहें कि शासन ने कुछ इस तरह के प्रबंध किए कि किसानों के लिए वो जन हितैषी योजनाएं प्लेटफॉर्म पर आई, यानी कि धरातल पर आई, और किसानों को एक मंत्र मिला, एक रास्ता मिला और एक दिशा मिली, और उससे उसने कृषि के क्षेत्र में लगातार प्रगति की। अगर हम इसे इस तरह से देखें कि न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में वरन समूचे क्षेत्र में भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, और आज भारत विकासशील का टैग हटाकर हम उम्मीद करते हैं 2047 में विकसित का टैग उसके ऊपर लग जाएगा, विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये भी बिल्कुल सर्वविदित है और सर्वमान्य है कि भूखे पेट ना हुए भजन को पाला। अगर व्यक्ति का पेट नहीं भरा होगा, यानी कि भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, हमारा अन्नदाता किसान का अनाज का प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो फिर किसी भी तरह की हम विकासात्मक गतिविधियां नहीं कर सकते, क्योंकि आप शरीर को कितने दिन चलाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र में लगातार प्रगति हो और नए नए अचीवमेंट्स, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में या कृषि के जो अनुसंधान केंद्र हैं उनकी नई नई खोज के माध्यम से, सरकार की नीतियों के माध्यम से हमारे किसान को मिले और वो असली धरातल पर उतरें और हमारा बम्पर प्रोडक्शन हर क्षेत्र में हो, न सिर्फ खरीफ में, न सिर्फ रबी में, न सिर्फ जायद में, उद्यानिकी में भी, फलों की दुनिया में भी हम लगातार इतने ज़्यादा बम्पर प्रोडक्शन करें। चाहे दक्षिण भारत का अगर हम मसाले ले लें और उत्तर भारत का हम चाहे एप्पल ले लें या ड्राई फ्रूट्स ले लें, लेकिन हम शिवपुरी जिले में बैठे हुए हैं, मध्यांचल जैसे कह सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में भी शिवपुरी जिले में बैठे हैं, यहाँ पर न तो मसाले हो रहे हैं दक्षिण भारत वाले, हालांकि हल्दी हो रही है मसाले के तौर पर, ना अखरोट हो रहा है उत्तर भारत का, लेकिन अनार हो रहा है अगर उसकी बात की जाए, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है और कई चीज़ें हो रही हैं। तो आज एक कुछ इसी तरह का एक विषय लेकर हम आए हैं बातचीत के लिए, विषय है विगत 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उन्नति और आगामी संभावनाएं। इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव, आप सीनियर साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में। डॉक्टर साहब, सुनने वालों के मध्य स्वागत है। विषय मैं आप तक बता चुका हूं और अपनी भावना आरंभ में मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, आप क्या कहते हैं?
3: नमस्कार किसान भाइयों, विगत 12 वर्षों में अगर हम बात करें, शासन या केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारा जो किसानों के लिए परिवर्तन देखने में आया है वो एक अभूतपूर्व है। अगर हम उसकी बात करें, कृषि को एक नई रफ्तार मिली है और कृषि के लिए जो वित्तीय बजट होता है उसका दायरा भी बढ़ाया गया। अगर हम बात करते हैं, देखी जाए तो पिछले 12 वर्षों के दौरान हमारे कृषि का, चाहे कोई भी अन्न का क्षेत्र हो या दलहन का क्षेत्र हो, तिलहन का क्षेत्र हो, फलों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन हो, सभी में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। यह हम कहें, एक समय था जब हम 2013-14 में 265 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न उत्पादन हुआ करता था, जो 2024-25 में बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया,
2: लगभग पौने दो गुना।
3: तो ये एक अभूतपूर्व वृद्धि है और ये वैज्ञानिक तकनीकियों के साथ शासन की जो नीतियां हैं उन सब के समन्वय से ये सफलता के मुकाम पर पाए गए। इसी तरह हम देखें कि जो हमारे वित्तीय आवंटन है वो 2013-14 में महज 27,663 करोड़ रुपए हुआ करता था कृषि के लिए, एक देश के लिए, और जो बढ़कर 2026-27 का जो अब आने वाला समय है इसके लिए 1,40,528.78 करोड़ रुपए का किया गया,
2: यानी कि लगभग पांच गुना।
3: तो ये सारा परिवर्तन एक बतलाता है कि कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन है उसके लिए शासन बहुत तेजी से किसानों के लिए, देश की जो हमारी आजीविका का मुख्य कृषि है उस पर ध्यान दे रही है। और हम इसमें उत्पादन की भी बात करें तो उत्पादन की भी, चाहे हमारे चावल का क्षेत्र हो, धान में हमने बहुत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक के देश में पहचान बनाई है। इसी तरह हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो आत्मनिर्भरता का अध्याय लिखा है, आज हमारे यहाँ अन्न के गोदाम भरे पड़े हुए हैं। विपरीत मौसमों में भी किसान भाइयों ने मेहनत और सरकारी सहयोग से जो नीतियां हैं गेहूं की उत्पादकता में लगातार सुधार किया हुआ। तो इस तरह से हम देखें, हमारे यहाँ पहचान बनी है। एक समय जो मोटा अनाज हुआ करता था उसको नगण्य अनाज की श्रेणी था, तो हमारे के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न की संज्ञा दी गई, और श्री अन्न की संज्ञा दी तो इसको एक बाजार मिला, तो खेत से बाजार तक की मुहिम में श्री अन्न बढ़े और इस लोगों ने उत्पादन भी किया जो हमारे कृषक बंधु हैं। आज वैश्विक बाजार में श्री अन्न के रूप में पहचान बनी है। तो ये भी कम पानी में अधिक पोषण वाली फसलें हैं और बड़े अच्छे मूल्य किसानों को मिलते हैं। हमारे देश के कई क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश का भी एक ऐसा जिला है, डिंडोरी है, मंडला है, या जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं जो मिलेट्स की खेती करते हैं श्री अन्न की, और कुछ क्षेत्र में हमारे शिवपुरी में भी करते हैं क्योंकि बाजरा भी श्री अन्न में आता है। तो ज्वार है, बाजरा है, शिवपुरी जिले में भी होता है। इसी तरह हम तिलहन के उत्पादन की बात करें तो तिलहन में भी जो हमने आत्मनिर्भरता पाए की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम देखे जाए तो इसके लिए जो प्रयास है 2013-14 में अगर हम बात करें तो वहां से हम बढ़कर 2025-26 में करीब 56% की वृद्धि की है तिलहन उत्पादन में। तो तिलहन उत्पादन का भी जो हमारा दायरा है उसमें हम शिवपुरी जिले को भी शामिल करें। आज से करीब 10-12 साल पहले शिवपुरी में सरसों एक तिलहनी फसल है, उसकी खेती मात्र 35 हेक्टर में हुआ करती, आज 1,00,000 हेक्टर से अधिक क्षेत्र में होती है,
2: यानी तीन गुना हमारा रकबा बढ़ गया
3: सरसों का। कम लागत की मुनाफे की फसल है, इसी तरह हम सोयाबीन है, मूंगफली है, ये भी तिलहनी फसल है। मूंगफली में तो ये है कि हमारे जिले की पहचान मध्य प्रदेश में सबसे बड़े रकबे में होने वाली है और एक जिला एक उत्पाद में मूंगफली से सीपी जिले की पहचान भी है। तो मूंगफली की अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ कृषि का क्षेत्र या कृषि विज्ञान केंद्र ने भी ऐसा कुछ किसानों के बीच किया है विगत 10-12 सालों में, उसमें मैकेनाइजेशन यंत्रीकरण को बढ़ावा दी। उससे क्या हुआ है, किसान की लागत कम हुई है और उत्पादन में वृद्धि हुई है और नई प्रजातियों का समावेश हुआ है। अब तो हाई ओलिक एसिड जो हृदय के लिए लाभकारी होता है, वो प्रजातियां गिरनार 4 है, गिरनार 5 है, वो भी कृषि के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र में आज विज्ञान की पहुंच है, हमारे जिले में भी पैदा होने लगी। इसी तरह हम अगर देखें जो दलहन का क्षेत्र है, एक राष्ट्रीय दलहन मिशन के अंतर्गत मिशन फॉर आत्मनिर्भरता दलहन के लिए चलाया जा रहा है। ये 2025-26 से लिए 30-31 तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, लेकिन पिछले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में इसको जोड़ा गया था, वहां से भी दलहनों के जो क्लस्टर प्रदर्शन है यानी कि जिस क्षेत्र में कम उत्पादन है उस क्षेत्र की पहचान करते हुए शासन ने चिन्हित किया है। तो वहाँ दलहन की जो केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन जो क्लस्टर यानी कि एक क्षेत्र में किए जाते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी का प्रभाव वहाँ दिख सके, चाहे वो मसूर हो या चना हो या उड़द हो, मूंग हो, ये पहचान बनाए। वृद्धि बढ़ते बढ़ते हमारे जो दलहन मिशन है उसमें भी एक लाभकारी परिणाम शासन की योजना का देखने में आ रहा है। अब बागवानी का क्षेत्र आता है तो शिवपुरी जिला और बागवानी ये अछूता नहीं। शिवपुरी एक ऐसा विविधता से भरा जिला है, यहाँ बागवानी की कई फसलें ली जाती हैं और बागवानी की कई सारी योजनाएं, चाहे वो बागवानी मिशन हो या अन्य योजना हो या सिंचाई की योजना हो या ड्रिप स्प्रिंकलर पॉली हाउस की योजना हो, वो सारी किसानों ने बड़ी बखूबी अपनाई है, शासन की योजना का लाभ लिया है और विविधीकरण अपनाते हुए जो हमारी कृषि क्षेत्र था उसमें उद्यान की फसलों को रकबा बढ़ाया। आज से करीब हम 12 साल पहले की बात करते हैं तो शिवपुरी जिले में करीब 5500 हेक्टेयर में टमाटर की खेती होती। आज का जो लक्ष्य अगर हम देखें शिवपुरी में 2026 का तो करीब 17500 हेक्टेयर है। तो इतना बदलाव हमारे को जब टमाटर में ही देखने में मिल रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ शिमला मिर्च है, कद्दू है, प्याज है, ये ऐसी फसलें हैं जो जिले को पहचान दिला रही हैं उद्यान की फसल। तो बागवानी की अभूतपूर्व सफलता शासन की योजनाओं से एक बहुत अच्छी पहचान शिवपुरी जिले को ही मिली है। यही बात आती है किसानों के लिए जोखिम कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
2: जी।
3: तो ये भी केंद्र सरकार की एक योजना ऐसी है जो किसानों के लिए आकस्मिक जो बहुत सारी विषमताएं आती हैं, कभी ओला है, वृष्टि है, सूखा है, इसको देखते हुए शासन ने एक किसानों के लिए आपदा प्रबंधन के लिए हितकारी योजना लॉन्च की है, उसका भी किसान भाई लाभ ले रहे हैं, तो उससे किसानों को फायदा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है MSP, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो शासन ने करीब MSP लागत का 1.5 गुना बढ़ाया है, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, इससे किसान को फायदा हुआ है। अगर हम यहाँ उदाहरण के रूप में कहा जाए तो मसूर दाल में सबसे अधिक 128% की शानदार बढ़ोतरी की गई है जो MSP में।
2: कितने वर्षों के अंतराल में?
3: ये पिछले 12 वर्षों के अंतराल में। इसी तरह हम रागी में देखें, रागी में भी 236% की वृद्धि की गई है MSP में। तो सभी फसलों में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें अभूतपूर्व वृद्धि होने से किसानों को लाभ हुआ है। किसानों की जो लागत अनुपात का करीब 1.5 गुना वृद्धि की गई है। अभी यहाँ सरकार का जो उत्पादन होने के बाद किसान सरकार खरीदने के लिए प्रोक्यूरमेंट जो करती है उसमें भी रिकॉर्ड करीब 76% की
2: बढ़ोतरी।
3: तो ये एक ऐसा देखने में आता है किसान के लिए जो सेकेंडरी मतलब उत्पादन के बाद की लाभकारी चीज है वो बड़ी लाभकारी। यही हम किसान के लिए बात करें, केंद्र सरकार एक PM किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये एक वर्ष में किसान के खाते में डालती है। तो ये डिजिटल माध्यम से अगर देखा जाए 2 मार्च 2026 तक 9.44 करोड़ रुपये से अधिक किसान परिवारों के खातों में 22 किस्तों के जरिए करीब 4.28 लाख करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी,
2: पहुंचाई जा चुकी। हार्ड कैश।
3: ये कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है,
2: मतलब सीधे रुपए मिलते हैं
3: हाँ किसान को,
2: और ये उससे वो अपनी खेती में मदद,
3: खेती में अपना जो इनपुट है उसको सामूहिक रूप से ये मदद में लाभकारी होता है। तो इसमें छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनके लिए बड़ी लाभकारी हुई।
2: ये जो भार्गव साहब आपने चीजें बताई है ये हमारी पिछले 10 वर्षों का कुछ निचोड़ निकल कर आया है, लेकिन समय प्रगति का है, समय डेवलपमेंट का है, समय रिसर्च का है, और रिसर्च के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर की, चाहे पूसा हो, चाहे झांसी का ग्रासलैंड हो, चाहे देहरादून का इंस्टीट्यूट हो, चाहे आलू अनुसंधान केंद्र हो हिमाचल का, ये सारे लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और एक दो शब्द और बहुत प्रचलन में आए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये क्या भविष्य में इसका लाभ किसान को मिलेगा?
3: बिल्कुल सही आपने कहा, ये पिछले कुछ वर्षों में हमारी, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा जो दिल्ली में है, उसके देश में करीब 100 से अधिक संस्थान है और वो अलग अलग फसल पे एक स्पेसिफिक रिसर्च के लिए काम करते हैं। झांसी में जो चारे के लिए काम करता है, शिमला में उसका रीजनल स्टेशन ग्वालियर में वो आलू के लिए काम करता है, सोयाबीन के लिए इंदौर में काम करता है। तो यहाँ की जो रिसर्च है उस रिसर्च से हमारे यहाँ विगत जो वर्षों में करीब 10-12 वर्षों में जो वैरायटियां या किस्में निकल के आई हैं, वो मौसम के अनुकूल या क्लाइमेट रिजिलेंट वैरायटीज आ रही हैं। किसानों को बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि हुई है। कभी देखने में आता है किसान जो अपना फसल प्रबंधन जो आकस्मिक कार्य योजना बनाता है, कभी बारिश लंबी चलती है, कभी बारिश मध्यम चलती है, कभी जल्दी खत्म हो जाती है, उसके अनुकूल 60 दिन से लेके 100-125 दिन तक की प्रजातियां आने लगी हैं। करीब हम सोयाबीन की बात करें या हम मूंगफली की बात करें तो 90 दिन से लेके उसमें भी 110 दिन की प्रजातियां आती हैं। तो ये सारा उत्पादन में जो बदलाव आ रहा है, ये रिसर्च अनुसंधान के बदलाव जो पहल है वहां से आ रहा है, इसका प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र का और कृषि विभाग भी कर रहे हैं। यहाँ बात जो डिजिटल मिशन और नमो ड्रोन दीदी के रूप में एक वैश्विक क्रांति भी आई है, क्योंकि एक दौर था जब हम बहुत ज्यादा श्रम के द्वारा मेहनत करके करते थे,
2: पानी भी छिड़क रहे हैं, खाद भी छिड़क रहे हैं, यूरिया भी दे रहे हैं, सब काम हो रहा है।
3: तो ये एक क्षेत्र एक समान रूप से ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी है, चाहे हमारी टॉल वैरायटीज हो, ऊंची किस्में हो, चाहे फल वाले पौधे हो, तो ऊंचाई पे एक ड्रोन के माध्यम से, चाहे उसमें चाहे पोषक तत्वों की पूर्ति करनी हो, जल विलय उर्वरक की पूर्ति करनी हो, कीट व्याधि नियंत्रण की दवाओं की पूर्ति करनी हो, और इसमें शासन ने एक और नोमो ड्रोन दीदी की योजना चलाई, तो उनको एक स्कूल ट्रेनिंग देके और ड्रोन पायलट के रूप में ग्रामीण भारत में आधुनिक पहल की गई है, एक नई क्रांति साबित हो रही है। इस तरह से ये डिजिटल क्रांति जो नमो ड्रोन दीदी के मान से आई है, ये बहुत लाभकारी हो रही है। यही किसानों को मैं बताना चाहूंगा, आज से 10-12 साल पहले किसान हमारे टमाटर की शिपरी की बात करें, फ्लैट लगाता था, आज हमारे शिपरी जिले में जो परिवर्तन देखने में स्टैकिंग है, ड्रिप है, मल्चिंग है और बंड पर है, तो उसका फायदा ये हुआ, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, जो फसल दिसंबर में ही खत्म हो जाती थी वो मार्च तक जा रही है, 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और मूल्य अच्छा मिल रहा है, और वहाँ लागत एक बार जरूर लगती है लेकिन उत्पादन मूल्य भी अच्छा मिलता फल का
2: और लंबे समय तक
3: चलता है। तो ये टेक्नोलॉजी का बदलाव है। और यहाँ ड्रिप के माध्यम से एक समय बहाव सिंचाई करते थे, फिर फब्बारा सिंचाई आई, अब तो ड्रिप है जिसको टपक बूंद बूंद सिंचाई है। तो ये बदलाव हमारे विगत वर्षों में किसानों ने बहुत तेजी से अपनाए भी है और समय की मांग भी है। देखिए बदलाव के दौर में डिजिटल क्रांति को आज हम हर जगह देखते हैं, चाहे हम एक सब्जी से लेके कोई भी क्रय करने जाएं, तो ये बदलाव कृषि क्षेत्र में बहुत आज से देखने मिला है और वो आज हमारे खेतों में परिवर्तन के दौर में देखने को लक्षित होता है।
2: नैनो टेक्नोलॉजी क्या है?
3: नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका बहुत फाइन नैनो टाइप्स, मतलब
2: तो जो नैनो शब्द साइंस में कहा जाता है परमाणु के अणु, परमाणु बिल्कुल सबसे छोटी इकाई को नैनो बोला,
3: नैनो तो नैनो का मतलब है कि बहुत ही छोटी इकाई। और ये नैनो जो फर्टिलाइजर के रूप में आजकल बात कर रहे हैं, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो जो भी अन्य जल विलय उर्वरक आते हैं, ये इसका ही आश्रय ये है कि हम समय पे अनुशंसाओं के अनुरूप फसलों को समान रूप से दे सकें। और नैनो टेक्नोलॉजी समय की धीरे धीरे मांग भी है, कम आवश्यकता और कम समय में अधिक पूर्ति करने का इसका आशय होता है।
2: पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, अपनी 7 बातों में एक बात थी कि हम रासायनिक या जैविक खाद की जगह पर परंपरागत या अपनी देशी खाद का प्रयोग करें। क्या ये भी आगामी वर्षों में अगर इस योजना को बढ़ावा मिलेगा तो हमें क्या क्वालिटी मिलेगी या प्रोडक्शन मिलेगा?
3: देखिए ये बहुत समय की एक जागरूकता और जैविक खेती जिसे बोल सकते हैं, जैविक खेती अब इसको सुधार के रूप में, जो आपने कहा परंपरागत खेती हमारी वही है जो हमारे पूर्वज करते थे, उसमें सुधार ये है कि उसको थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल में ला दिया है, एक हमारी देसी गोवंश गोधन के माध्यम से प्राकृतिक खेती, देसी गोवंश के गोबर गौमूत्र से बहुत सारे उत्पाद है जिसमें घनजीवामृत है, जीवामृत है, नीमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सारे आयामों को जोड़ते हुए और उसमें आच्छादन है, मल्चिंग है, कम जुताई है, इस प्रक्रिया को करते हुए वहाँ क्या है कि उपचार से बचाव है, उस भावना को रखते हुए जो मिट्टी की दशा है उसको सुधारना है। जब मिट्टी अच्छी होगी खेत की तो फसल अपने आप सोते अच्छी होती, तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव है जो खेती के लिए लाभकारी है उनकी संख्या में वृद्धि करना और इस वृद्धि से फसल को अपने आप लाभ होगा। आज के दौर में हम देख रहे हैं किसान भाई अंधाधुंध रसायनों विचारों का प्रयोग कर रहा है। मैं यह कहूंगा अंधाधुंध नहीं करें, आप कम से कम संतुलित पर आए पहले, और संतुलित पर जो समझते हैं संतुलित के साथ साथ हमको प्राकृतिक खेती पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विकार का जो कारक है, हम चाहे फैटी लीवर देखें, किडनी है, स्टोन है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं जो हमारे खान पान में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसका रेसिडुअल इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें किसानों को समझते हुए थोड़ा सा प्राकृतिक खेती के स्वभाव भाव की ओर जाना चाहिए, कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती के अनुभव को अपनाते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। और सबसे खास बात है, इसमें जो उत्पादन में थोड़ी बहुत गिरावट आकर ऐसा लगता आती भी है तो उसके उत्पाद है उसका मूल्य अलग से मिलेगा। शासन प्रशासन ने हमारे यहाँ एक प्राकृतिक खेती हाट बाजार भी शुरू कर दिया, शिवपुरी जिले में भी पुरानी अनाज मंडी में लगता है, तो वहाँ हम धीरे धीरे इसको शासन प्रशासन और गति देने वाली है, तो इस तरह की प्रक्रिया से जुड़ेंगे तो हम प्राकृतिक खेती से जुड़ के अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
2: तो डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव साहब, जो आज की बातचीत का विषय था, विगत 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उन्नति और आगामी संभावनाएं, यानी कि 10 वर्षों में हमने डेवलपमेंट भी किया है 10 से 12 वर्षों में, और संभावनाएं तो अपार हैं, जिससे हमारा अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और क्वालिटी बेस्ड होगा और शारीरिक शुद्धता के लिए भरपूर होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उसका उत्पादन किया जाएगा। तो आज आप हमारी इस बातचीत का हिस्सा बने, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले श्रोता इससे लाभ लेंगे और अपनी कृषि में नए अनुसंधान, जो कृषि विज्ञान केंद्र और भारत की तमाम अनुसंधान संस्थाएं जो उनके लिए पहुंचाती हैं, उनका प्रयोग करके अगर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो अवश्य लाभ लेंगे और भारत को एक विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रृंखला में लाकर खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: नमस्कार
0: भैया, अब अपन सुन रहे थे जो भेंटवार्ता जाको विषय है तो सेवा के 12 साल, विगत 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र में उन्नति और आगामी संभावनाएं, जाकी जानकारी दे रहे थे अपने डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव, और इनसे बातचीत करी थी अपने भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया आओ देखो कितनी अच्छी जानकारी दी और विस्तार से जानकारी दी। तो जिन भैया ने आज चौपाल पे बैठ के हमारी इस जानकारी को सुनी होगी तो वो जरूर लाभ लेंगे और उन्हें समझ में आई होगी कि ये जानकारी काय कराना है, काय बेना, सही कह रहे ना?
1: सही कह रहे भैया, और अब अपने भैया के लिए सुनवा देते हैं जो जरूरी संदेश।
0: हाँ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: अब अपन बात कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान की। तो
1: हाँ यार,
0: भैया जी, जो खेत बचाओ अभियान जो चलाओ जा रहा है वो 1 जून से 30 जून तक चलाओ जा रहा
1: चलाओ जा
0: है।
1: रहा हूँ।
0: और भैया जा अभियान को चलावे को उद्देश्य यही है कि किसानों को अपने खेत की माटी के प्रति और जो जल संसाधन है उनको जागरूक करना कि कैसे जो रासायनों का उपयोग कर करके अपने जो खेत की माटी है वो बाकी उपजाऊ क्षमता घटत जा रही
1: घटत
0: है।
1: जा रही है तो भैया बाकी अपाई घटवे से
0: जो नुकस
1: उपजाऊ जो अपाई जो क्षमता है उत्पादन की वो कम हो जा
0: कम
1: रही
0: हो
1: है।
0: जा रही है का ऐसे कि भैया देखो अपन के लाने अच्छो फसल उत्पादन लेनो है तो अपनी
1: हाँ
0: माटी को स्वस्थ होनो बहुत ही
1: बहुत ही
0: जरूरी है।
1: जरूरी है। और स्वस्थ होवे के लाने अपन के लाने का करने है भैया, अपन को जैविक खादन को उपयोग करने
0: जैविक
1: है।
0: खादन को उपयोग करना है,
1: हाँ
0: प्राकृतिक खेती
1: रासायनिक
0: करना
1: खादों
0: है।
1: को अपन को बिल्कुल उपयोग नहीं करने है, क्योंकि रासायनिक खादन को उपयोग करेंगे तो भैया अपने लाने अपनी माटी को जो पोषक तत्व
0: पोषक
1: है वो
0: तत्व
1: नष्ट हो जा
0: नष्ट
1: रहे
0: हो
1: हैं।
0: जा रहा है जो अपन रसायनों को उपयोग कर रहे
1: हाँ
0: हैं। और भैया देखो ये जो अभियान चलाओ जा रहा है जाको उद्देश्य सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि कहा है कि अपने जो खेत की माटी है और अपने जो जल संसाधन है उनको सुरक्षित
1: उन्हें भी सुरक्षित रख
0: हाँ
1: हुए है कि माटी को अपनी जो प्रदूषण हो रही है वो माटी प्रदूषित ना हो, है
0: हाँ
1: ना।
0: और जय के
1: और
0: संगे अपने जो किसान भैया बहने भी जो है आधुनिक खेती को अपना दवाए जो वैज्ञानिक खेती है तो भाई के संगे संगे प्राकृतिक और जैविक
1: खेती को
0: खेती
1: अपनाए,
0: अपना है।
1: हाँ जिससे कि भैया अपाओ एक तो उत्पादन भी अच्छो होगो और
0: हाँ
1: जो अनाज उत्पादन होगो वो अपने स्वास्थ्य के लाने बहुत ही लाभदायक होगो।
0: यानी कि वो गुणवत्तापूर्ण
1: हाँ
0: होगा,
1: और वाह अनाज की भैया बहुत मांग हो रही है जा
0: मांग
1: समय
0: हो रही है। सही कह रहा है भैया। तो अपने भैयन को जा बात को समझना चाहिए कि भैया देखो जब कोनू मिशन चलाओ जाते कोनू अभियान चलाओ जाते तो वो यही के लाने चलाओ जाते कि जाके प्रति लोग जो है जागरूक
1: जागरूक
0: हों।
1: हो। और बाकी प्रति भैया जागरूक हो के बाकी प्रति अपन अच्छो
0: हाँ
1: मतलब अपनी माटी को बचाएं, अपनी माटी खेत की खेत में ही रहे और भैया वहां को प्रदूषित होवे से अपन को बचावे के लाने अपन जो भी भरपूर प्रयास कर सकते हैं वो
0: वो
1: अपन
0: अपन
1: को करने।
0: करना चाहिए।

0: एक तो यही है कि भैया जो रासायनिक खाद उर्वरक को अपन उपयोग कर रहे हैं बाको संतुलित मात्रा में करें।
1: हाँ तो बहना देखो, अब अपाई जो किसान वाणी कार्यक्रम है वो अपाई अब जो खड़ी है बिल्कुल इजाजत
0: चलो
1: दे
0: तो
1: रही है।
0: अपन सगाई भैया बहनन से ले लेते हैं आज्ञा। सगाई भैया बहनन को रूही बहन और
1: और
0: धर्म भैया
1: धर्म
0: की
1: भैया की राम
0: राम राम।
1: राम,
0: जय
1: जय
0: जवान
1: जवान,
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसान

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: ये थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
3: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: वाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने

0: ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना, जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज, जहां पर 50,000 करोड़ SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
0: पीएम डिवाइन स्कीम जो है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतर कर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
0: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में, सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष विरासत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
6: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जिसको हमने लिया है फिल्म नसीब से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म एक दूजे के लिए। इस फिल्म से आवाजें हैं लता मंगेशकर, एसपी बाल सुब्रमण्यम और शादियों की आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शान से, आवाज मोहम्मद रफी की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है।

ये फिल्म का नाम है आवाजें। इस गाने में हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, शैलेंद्र सिंह, आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म श्री 420 से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और साथियों की। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजने को हैं और आज 10 बजे आप सुनेंगे, जी हाँ, आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का सबसे पहले गीत हम लेकर हाजिर हैं, जिसको हमने लिया है, कौन सी फिल्म से लिया है। सबसे पहले तो हम उस फिल्म का नाम आपको बता दें। फिल्म का नाम है आशा और आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है वो है घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, मुनमुन, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है, लिखने वाले हैं गौरी नगर इंदौर से। और खत जिन्होंने भेजा है उनके नाम है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोटा राजस्थान से नवेद खान, जावेद खान, आशीष, हैप्पी और उनके बहुत सारे दोस्त। सुनते ही ये गाने।

जब जब फूल खिले हैं, ये फिल्म का नाम है। आवाज इसमें जिस गाने के लिए हमने ली है वो आवाज है मोहम्मद रफी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके साथी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर जिला नादेड़ से, प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये खत आया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, शालिया, शोएब, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद। और गांधी बाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर।

माँ का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना फिरना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हम

अगला गाना लिया है हमने फिल्म सरगम से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। कोटवा नारायण बावा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रेश रोशनी राय, प्रांजल राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मालोट पंजाब से लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, सौरभ शर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है ताज मोहम्मद अंसारी, साबिर राही और मेरा जहां, इन्होंने ये खत लिखा है आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मोहम्मद रफ़ी के, माफ़ कीजिए, मोहम्मद अज़ीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हमने अगला गाना लिया है, और इस फिल्म का नाम है धुत का कर्ज़। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और इस वाले गाने में जो हम आपको सुनवा रहे हैं ये इसमें अनु मलिक का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आरिफ खान, अदीब खान, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, इन्होंने ये पत्र लिखा है भाटापारा दतरंगी से, और महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, इन्होंने ये गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है।

इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा है, नौशाद का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मनिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये ख़त आया है सागर से, लिखने वाले हैं अमित कुमार जैन, निशा जैन, और ये पत्र साफ नहीं लिखा गया है, और मेरा ख्याल है अदिति जैन, इन्होंने ये पत्र भेजा है, और सुनते हैं ये गाना।

और आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है पैंकेस्ट से। मजरू का लिखा हुआ गाना है और एसडी बर्मन के संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत एस एल कंडारा का वायलिन पर बजाया राग यामिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत SL कंडारा का गाया वायलिन वादन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।